मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। DRM 810 किलो हर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने आइए सुनते हैं समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, कहते हैं अगर सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले तो सारे दुख सारी चिंता दूर हो जाती है। तो आइए इस सुबह की शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम के साथ और कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये भजन महेंद्र कपूर और दिलराज कौर की आवाजों में। श्रोताओं, जग जननी माँ सारी जगत की माता है, वह हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में ये भजन। और अब कार्यक्रम का अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और गले में नाग देवता विराजते हैं और मस्तक पर चंद्रमा चमकता है, वो देवों के देव महादेव हैं और साथ में और सच में वो भोले भी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, वो उनके जीवन से सारे कष्टों को हर लेते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए श्रोताओं, शिव शंकर के चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करते हैं और सुनते हैं हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ों में ये भजन।

श्रोताओं, हमारे संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वो भक्तों के लिए अमृत बन जाती है। उनके वचन समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। श्रोताओं, इस संसार में मोहमाया को संतों ने एक ऐसा जाल बताया है जो हमें इस संसार में उलझाए रखता है, और वहीं साधना और समर्पण हमें सत्य से जोड़ती है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये शब्द महेंद्र पाल सिंह और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, आइए अब खुदा की इबादत में अपने सर को झुकाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद अहमद खान और साथियों की आवाज में ये नात।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अहमद खान और साथियों की आवाज में ये नात, और अब कार्यक्रम का समापन करते हैं मौसमी दत्ता के गाए शंकर जी की आरती के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः 6:30 हो रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे, और संगीत था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है चिंतन।
1: ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशियां बांटो। न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख दुख, मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे काव्यधारा के अंतर्गत नानक चंद का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: हे पार ब्रह्म परमेश्वर, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बहुत खूबसूरत थी धरती तेरी, बहुत खूबसूरत थी धरती तेरी, पर मैं दो फूल वफा के खिला न सका। तुमने तो रखे खुले दरवाजे, पर मैं ही तुम तक आ न सका।

ये वतन ब्रह्मवर्त, भारतवर्ष का पहले नाम सतयुग में ब्रह्मवर्त था। फिर से ब्रह्मवर्त बने ये वतन, स्वामी कार्तिकेय का ये मेरा चमन, सूर्यवंश।

0: वतन एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत है। नजर खोल कर देख नजारा मिलेगा, रब की आंख का तब इशारा मिलेगा। तू बिछुड़ गया है अपने जिस परमात्मा से, सनम वो तुझको दोबारा मिलेगा। जला तो सही दिल में तू इश्क का चराग, जला तो सही दिल में तू इश्क का चराग। आंख खोलेगा तो हर कोई तुम्हारा मिलेगा। वैसे तो है हर जगह तेरा ही जलवा, पर कब दर।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। पञ्चविंशति दिनानां सत्रेऽस्मिन् एकोनविंशति उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य अपमान निवारणस्य संशोधन विधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकम्, आयकर संशोधन विधेयकम्, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकम् 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेऽस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्वसन्ध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां 40 राजनैतिक दलानां 50-तोप्यधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भाग ग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज जानकारी का विषय है कब्ज और अपच उपचार।
3: खान पान में गड़बड़ियों के चलते तमाम लोग कब्ज और अपच के शिकार हो जाते हैं। कब्ज और अपच के कारण कुछ और बीमारियां भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। अपच व कब्ज आम आदमी के लिए उस आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की देन है जिस पर आज उसे गर्व है। विज्ञान और तकनीक पर आधारित आज के परिवेश ने मनुष्य की रोजमर्रा की आदतों और आवश्यकताओं में व्यापक परिवर्तन किए हैं। उसके रहन सहन का स्तर बदला है तथा उसके साथ ही उसके खान पान के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। आज मानव अपना भोजन सीधे धरती से न लेकर मशीनों द्वारा सील बंद किए गए पैकेटों से लेने को प्रमुखता देता है और इसी वजह से मनुष्य रेडीमेड खान पान की चीजें लेता है। केवल 3 मिनट में तैयार होने वाले नाश्ते और भोजन की तर्ज पर वह उस भोजन को प्रमुखता देता है जो जल्दी तैयार हो जाए और खाने में भी आसान हो। विज्ञान ने जहां एक तरफ आम आदमी को खान पान में सुविधा उपलब्ध कराई है, श्रम और समय की बचत हुई है, वहीं दूसरी ओर उसके भोजन में रेशेदार और चोकरयुक्त पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम हो गई है जिससे मनुष्य अपच व कब्ज जैसी आम बीमारियों का शिकार हो रहा है। आज चिकित्सकों के पास प्रतिदिन आने वाले रोगियों में से 20-25% रोगी ऐसे होते हैं जो अपच और कब्ज जैसी बीमारियों के ग्रास बन चुके होते हैं। यूं तो साधारण व्यक्ति भी कब्ज का मतलब समझता है लेकिन चिकित्सकीय भाषा में कब्ज आम आदमी की उस समस्या को कहा जाता है जब प्रतिदिन कम से कम एक बार शौच जाने पर भी उसका पेट साफ नहीं होता। आमतौर पर ये शिकायत डाइटिंग करने या फिर लगातार कुर्सी पर बैठे रहने से होती है। भोजन में हरी और रेशेदार सब्जियों एवं मौसमी फलों का अभाव होना और व्यायाम से दूर होना अपच व कब्ज जैसी रोगों के प्रमुख लक्षण हैं। अपच तथा कब्ज के शिकार रोगियों के लिए यूं तो फल और सब्जियां दवाओं से भी कहीं अधिक अच्छी होती हैं। इनका सेवन निरंतर करने से इन रोगों से मुक्ति मिलती है। मौसमी फलों और सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और तुरई प्रमुख हैं और पपीता तो ऐसे रोगियों के लिए रामबाण औषधि की तरह है। यह अन्य फलों की अपेक्षा सस्ता भी होता है और पेट के लिए काफी हितकारी होता है। इसके अलावा हर सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहे। अधिक पानी पीने से मल सूख कर सख्त नहीं हो पाता, इस कारण व्यक्ति कब्ज या अपच का शिकार नहीं हो पाता है और भोजन को पचाने में भी पानी सहायक होता है। और अपनी नित्य प्रतिदिनचर्या में चाय, कॉफी के तंबाकू के साथ साथ ऐसे भोज्य पदार्थों का भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए जो अधिक चिकनाई या मसालेदार हों। और यदि कोई व्यक्ति कब्ज या अपच का शिकार होता है तो वह 4-6 चम्मच इसबगोल की भूसी का सेवन पानी, दही या गर्म दूध के साथ सुबह शाम करे और यदि उसको तब भी आराम नहीं मिलता तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अपच और कब्ज के रोगी को जब रोग काफी पुराना हो जाता है तो मल विसर्जन के समय मांस की 2-3 गांठें बाहर निकलती हैं, जिनसे बूंदों या कभी कभी धार के रूप में रक्त बाहर निकलता है लेकिन सामान्यतः उसे किसी खास पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। ऐसा रोगी प्रमुख रूप से अर्श या बवासीर जैसे घाव के रोग का शिकार होता है और उन्हें चाहिए कि वे तुरंत बिना विलंब किए किसी योग्य चिकित्सक की शरण लें और नीम हकीमों या फिर चांदसी अस्पतालों के चक्कर में न पड़े क्योंकि विलंब होने की स्थिति में रक्त बाहर निकलता जाता है और रोगी खून की कमी एनीमिया का शिकार हो जाता है।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में कब्ज और अपच उपचार विषय पर जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। इसमें आज जानकारी का विषय है मिट्टी की दशा और फसलों का चुनाव।
4: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं मिट्टी की दशा और फसलों का चुनाव के संबंध में। किसान भाइयों, हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन करते हैं, और भाई हम देखो अपनी मिट्टी की दशा के अनुसार ही अपने खेतों में फसलों का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी खेती का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। किसी भी देश की कृषि व्यवस्था उसकी मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसान भाइयों, मिट्टी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, जल तथा सहारा प्रदान करती है। यदि मिट्टी की दशा अच्छी हो और उसके अनुसार उचित फसलों का चुनाव किया जाए तो हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ सफल खेती के लिए मिट्टी की प्रकृति, उर्वरता, जल धारण क्षमता और पीएच मान, पोषक तत्वों की उपलब्धता का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। इसकी जानकारी के लिए हमें चाहिए कि अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, यानी कि मिट्टी का नमूना मिट्टी प्रयोगशाला में देखकर हमें जो है अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे खेत की मिट्टी की उर्वरता कैसी है, उसका पीएच मान कैसा है। यदि भैया 7 से कम है तो हमारी मिट्टी अम्लीय होगी, और 7 से ऊपर है तो हमारी मिट्टी क्षारीय होती है। भैया उसमें सभी तरह के कॉलम बने होते हैं और उसमें सभी पोषक तत्व, पीएच मान और मिट्टी की उर्वरता के संबंध में पूरी जानकारी भैया उस कार्ड में होती है। किसान भाइयों, भारत में वैसे तो अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भैया अगर हम बात करें तो भाई जैसे दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी प्रमुख है। किसान भाइयों, मिट्टी की अपनी विशेषताएं होती हैं, उसी के अनुसार फसलों का चयन किया जाता है। किसान भाइयों, अगर

0: हम बात करें दोमट मिट्टी के संबंध में, तो भाई देखो दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इसमें गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, आलू, दलहन तथा तिलहन जैसी फसलें अच्छी उपज देती हैं। और भैया अगर बात करें बलुई दोमट मिट्टी की, तो बलुई दोमट मिट्टी भी भैया लंबे समय तक हमें अच्छी उपज देती है। और इसमें भैया कपास, सोयाबीन, ज्वार, अरंडी, दालों की खेती हमारे किसान भाई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है रेतली मिट्टी की, जिसमें भाई हमारे किसान भाइयों के लिए जल धारण क्षमता कम होती है। इसमें तरबूज, खरबूजा, कुछ सब्जियों की खेती भी हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से ये मिट्टियों की जो है कैटेगरी होती है, और मिट्टी जो है इस तरह की हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं फसलों के चुनाव की, कि भाई फसलों का चुनाव करते समय केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि जलवायु, वर्षा, तापमान, सिंचाई की सुविधा तथा बाजार की मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसान भाइयों, यदि हम बाजार की मांग को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसे ही भैया फसल बो देते हैं, मान लो बाजार में हमारी सब्जियों की डिमांड है और हमने बो दिया भैया, या कोई अन्य फसल बो दी, तो भाई फसलों का दाम भी कम मिलेगा, साथ ही साथ उसे लेने वाले कम मिलेंगे। तो इस तरह से भैया हम जो है अपने खेतों में इस तरह की फसलों का चयन करना है जिसका भैया हमारे आसपास बाजार हो, किसी क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध हो, तो भैया किसान भाई पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगा सकते हैं। यदि वर्षा पर आधारित हैं, तो भाई हम जो है कम पानी की डिमांड वाली या कम पानी चाहने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए समय समय पर मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। और आज के समय में वैज्ञानिक खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो भाई आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और मृदा का परीक्षण के माध्यम से आप किसान भाई अपनी भूमि के अनुसार सही फसल का चयन कर सकते हैं। इससे उत्पादन लागत कम होती है, आय हमारे किसान भाइयों की बढ़ती है। किसान भाइयों, भूमि हमारी उर्वरता और सुरक्षित बनी रहती है। किसान भाइयों, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं खेती से जुड़े अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था मिट्टी की दशा और फसलों का चुनाव। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। रात्रि 8 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे पब्लिक स्पीच और रात्रि 10 बजे सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 9:15 पर जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा पुनीत मेहरा के गाए भजनों का शाम 7:32 पर। शाम 6:45 पर विविधा के अंतर्गत डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय रहेगा खड़ी बोली का क्रमिक विकास। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। चर्चा का विषय रहेगा हरे चारे वाली फसलों की देखभाल। साथ ही सुनेंगे मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय विषय पर भेंटवार्ता। इस विषय पर नरेश कुमार से बातचीत रहेगी प्रमोद सिंह की। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:15 पर। इसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, लव स्टोरी और साथ ही सुनेंगे फिल्म संगीत। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, विश्व शतरंज दिवस पर जानकारी दी जाएगी और मानसून और पौधारोपण, प्रकृति से हमारा रिश्ता विषय पर आप सुनेंगे स्थलीय रिकॉर्डिंग। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है।
5: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुआ है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
4: इस अवसर पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
6: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
7: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को कल प्रशासक बना दिया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
8: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मोहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
4: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का कल लखनऊ में समापन हो गया।
9: शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खड़से ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। यह शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने तथा नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र में गजरौला मार्ग पर कल शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ओवरटेकिंग के दौरान बाइक सवारों और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने बताया कि टक्कर के बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में पलट गया, जिसमें कैंटर सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कल रात मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों तथा तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड में बारिश का ये क्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा।
10: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे भारी वर्षा की भी संभावना है।
4: इस बीच जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा कल से रोक दी गई। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन अगले माह 28 अगस्त को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

निकलता है हर रोज सूरज ये बताने के लिए, निकलता है हर रोज सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। जी हाँ श्रोताओं, हमारे पास जो कुछ है अगर हम उसे बांटते हैं तो वो हमेशा बढ़कर मिलता है, चाहे वो खुशियां हो, मुस्कान हो, प्रेम हो या फिर सम्मान। आप इन्हें जितना बांटेंगे कई गुना बढ़कर ये आपको वापस मिलेगा, यही संसार का नियम है। जी हाँ, कार्यक्रम का भी यही नियम कहता है कि अपने श्रोताओं तक कार्यक्रम को ठीक समय पर पहुंचाया जाए। तो श्रोताओं, हम लेकर आ गए हैं आपके मन पसंद कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है सूरज के साथ साथ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी साथी रिमझिम बलूनी, और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। तो आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। श्रोताओं, हमारे भारतीय पुराण में तो चंद्रमा को देवता का रूप माना गया है, और बचपन से हम चांद से जुड़ी कहानियां भी सुनते आए हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। और चांद को चंदा मामा कहकर भी संबोधित किया जाता है। लेकिन श्रोताओं, क्या कभी हमने ऐसा सोचा था कि जिस चांद की उपमाएं दी जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं और जिसे बहुत दूर से हम निहारा करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के कदम उस पर पड़ेंगे या फिर क्या कभी इतनी लंबी दूरी पार करके वहां पहुंचा जाएगा? ये सवाल किसी ना किसी के मन में श्रोताओं जरूर आया होगा। और कहते भी है ना कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और कड़ी मेहनत, लगन और सही दिशा में काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो इसी चांद पर पहुंचने की सफलता के जश्न को याद करने के लिए हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, आज का ये दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। जी हां, 20 जुलाई साल 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले इतिहास के पहले मनुष्य थे। 1960 में दशक के अंत तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य घोषित किया गया था। श्रोताओं, जबकि ये लक्ष्य 8 साल बाद अपोलो 11 मिशन के रूप में पूरा हुआ। 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव लाकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की, और ये प्रस्ताव बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। श्रोताओं, आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंचकर कहा था जो आज तक प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम मानव जाति के लिए बड़ी छलांग है। मिशन में चंद्रमा पर उतरने के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर करीब 21 घंटे बिताए और कुछ चंद्र सामग्री अध्ययन के लिए उन्होंने इकट्ठा की। इस दौरान पायलट माइकल कॉलिंस चंद्र कक्षा में कोलंबिया कमांड मॉड्यूल उड़ा रहे थे। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की सतह का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों की याद दिलाता है ये दिन, और ये दिन हमें ये समझाने में भी मदद करता है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी किस तरह से विकसित हुई और भविष्य में इसमें बहुत कुछ खोजने की गुंजाइश है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम एक और दिवस मना रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और ये दिवस हर साल 20 जुलाई को

मनाया जाता है। श्रोताओं, शतरंज का खेल बुद्धि और रणनीति का प्रतीक है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पूरी दुनिया में 20 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर सम्मान देने के लिए साल 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे की स्थापना की गई थी। इसके बाद साल 1966 में फीडे की पहल पर दुनिया में पहली बार 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शतरंज के खेल को बढ़ावा देना और युवाओं के मानसिक विकास को एक नई दिशा देना है। श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो शतरंज का खेल पहले राजा महाराजाओं द्वारा भी खेला जाता था और इस खेल का नाम पहले चतुरंग हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर शतरंज कर दिया। श्रोताओं, शतरंज का खेल एकाग्रता, निर्णय लेने, सोच को सुधारने, समस्या को सुलझाने जैसे कौशल में सुधार लाता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के बारे में, और अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब नजर डालते हैं अखबारों की आज की प्रमुख सुर्खियों पर। तो सबसे पहले ये खबर अमर उजाला से। अमर उजाला लिखता है कि रात में हुई बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। रविवार को दिनभर बादल छाए रहने और रात में बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना बताई है। 700 से अधिक शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों में होंगे तैनात। जिला बिजनौर में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 700 से अधिक शिक्षकों के सरप्लस श्रेणी में चिन्हित किया है। इन शिक्षकों को विभागीय प्रक्रिया के साथ अब उन विद्यालयों में तैनात किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से जिले के एकल शिक्षक व्यवस्था वाले शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर होगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। आगे लिखता है, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी सिंधु। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को अकाने यामागुची को 21-17 से हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है और वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और अब देखते हैं दैनिक जागरण की ओर। दैनिक जागरण लिखता है कि 1,00,000 यूनिट बिजली बना रहे सोलर पैनल। श्रोताओं, बिजली के बिल में कमी लाने के लिए उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से तेजी से जुड़ रहे हैं और इस योजना के तहत जिले में अब तक 6,161 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक यूनिट बिजली बना रहे हैं, जो सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद खबर है। और एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाएंगी साधारण बसें। कांवड़ मेले के दौरान देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। रोडवेज सभी बसों का संचालन

देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से वाल्वो और एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। श्रोताओं, जबकि साधारण बसें सामान्य रूटों से संचालित की जाएगी, इससे जाम की समस्या श्रोताओं काफी कम हो जाएगी और जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब रुख करते हैं हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान लिखता है कि अब बिना आधार कार्ड के नहीं रहेगा कोई भी नौनिहाल। जी हाँ, बेसिक स्कूलों में करीब 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, लेकिन अब इन बच्चों के आधार कार्ड बनने की उम्मीद जगी है। बीएसए ने करीब 20 ऑपरेटर तैयार किए हैं जो इन बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे। और जेईई नीट जैसी परीक्षाएं सेनाओं में प्रवेश का आधार बनेगी। ये बहुत अच्छी खबर है कि सेनाओं में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे जीईई, क्लैट पीजी, नीट पीजी के प्रभावी इस्तेमाल की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। सेना की कोशिश है कि वे खुद बार बार परीक्षाएं कराने से बचें तथा इन राष्ट्रीय परीक्षाओं के रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाएं। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश की आवाज में, फिल्म है धर्म करम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म थी धर्म करम। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में क्या कुछ खास है आज के तिथि विशेषांक में। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 20 जुलाई साल 1950 में नसीरुद्दीन शाह का जन्म बाराबांकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने फिल्मों और रंगमंच में अपने शानदार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई। नसीरुद्दीन शाह की वास्तविक अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशांत से हुई। इससे पहले 1967 में उन्होंने फिल्म अमन में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, उनकी कुछ फिल्में मासूम, स्पर्श, पार, इकबाल, सरफरोश, मोहरा, इश्किया है, और इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। उनके अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन एक ऐसी बहादुर महिला का भी जन्म हुआ था जो भारत की पहली दिव्यांगजन और विश्व की पहली महिला दिव्यांगजन है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। और हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की। इनका जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ था। अरुणिमा बचपन से ही खेलकूद में रुचि रखती थी और वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी थी। श्रोताओं, अरुणिमा की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आया और ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ लुटेरे ट्रेन में घुस गए और विरोध करने पर अरुणिमा को ट्रेन से उन्होंने बाहर फेंक दिया और इस दुर्घटना में वो अपने पैर खो बैठी और डॉक्टरों ने उनके कृत्रिम पैर लगाए। अरुणिमा ने अपने पैर गवा दिए थे, लेकिन उनका हौसला उनकी ताकत बनकर आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। अपने पैरों को खोने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की शिखर चोटी पर पैर रखा और भारत की इस बेटी ने अपनी साहसिक और अतुल्य सफलता से न सिर्फ अपना जो उनका लक्ष्य था उसे पूरा किया, बल्कि ये दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 20 जुलाई साल 1973 को मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस ली ने इस संसार को अलविदा कह दिया था। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कला से श्रोता तहलका मचा दिया था और ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को फ्रांसिस्को में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था और बाद में अपनी खुद की फाइटिंग स्टाइल बनाई। उन्होंने एंटर द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ क्यूरी जैसी फिल्मों में हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और ब्रूस ली की रफ्तार इतनी तेज थी कि फिल्मों में उनके एक्शन सीन्स को ठीक से कैद करने के लिए कैमरे को खास रफ्तार पर चलाना पड़ता था। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको फिल्मी सफर की ओर। और आज के इस फिल्मी सफर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय अभिनेता की जिनका जन्म 20 जुलाई 1929 में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबली कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार तुले जन्मे तो सरहद के उस पार थे सियालकोट में, लेकिन फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद जब उनका परिवार मुंबई आया तो फिल्मों में काम की शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के एक छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी। साल 1960 के दशक में उनकी कई फिल्में लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमा हॉल में दिखाई जाती थी। श्रोताओं, उन्होंने कानून, मेरे महबूब, आरजू, जिंदगी साथी तलाश ऐसी काफी फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कुमार का अभिनीत ये गीत। फिल्म है सूरज और आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
2: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। ऑर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
4: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
5: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
0: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
6: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
6: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026.
8: And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
9: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
8: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
10: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
8: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. The President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia, and Romania. After concluding her visit to Moldova, the President in the second leg of her visit will reach North Macedonia tomorrow. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Our correspondent reports that tribal communities have been kept outside the scope of this law.
11: Madhya Pradesh has taken a major step towards implementing the Uniform Civil Code or UCC. A cabinet meeting was held yesterday at Jagdishpur in Bhopal district, chaired by Chief Minister Dr. Mohan Yadav. At this meeting, the draft of the UCC Bill 2026 was unanimously approved. The bill will now be tabled in the monsoon session of the State Assembly, which begins today. The session will run until 24 July. After the cabinet meeting, Chief Minister Yadav told reporters that the UCC will give equal status to everyone in the state. He said multiple marriages will no longer be valid in the state. According to UCC bill, those in live-in relationship will have to register within 1 month. Marriage registration will also be made mandatory down to the village level. However, tribal communities have been kept out of its scope. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Jammu and Kashmir, 11 persons were killed and 8 are missing as rains triggered flash floods and landslides in the twin border districts of Rajouri and Poonch yesterday. Hundreds of people were rescued and shifted to safer places in multi-agency relief and rescue operations. Union Home Minister Amit Shah reviewed the situation following the incident. He assured of all help from the centre to Jammu and Kashmir. A report.
12: The devastating floods that hit areas of Rajouri and Poonch districts Saturday night, besides incurring huge losses of life, caused massive damage to private and government property, roads and other infrastructure also. In an incident of landslide, 8 persons of a family were buried under the debris of their house in Lower Mada Tehsil of Sorenkot. In Poonch district, around 12 vehicles were either damaged and washed away in the flash floods. Body of a woman was also fished out from a river in Rajouri town. Hundreds of residents to move to safer locations as flood waters in inundated low-lying areas. Weather advisory warned of moderate to heavy rainfall across Jammu and Kashmir till July 23. This is Angulshan Rana for Akashwani News from Jammu.
8: The southwest monsoon has once again become highly active over Himachal Pradesh. The Meteorological Department has issued red and orange alerts for today and tomorrow, warning of heavy to very heavy rainfall across most parts of the state. A report.
3: During the past 24 hours, the highest rainfall of 82.2 millimeters was recorded at Dharamshala in Kangra district. According to the Meteorological Center Shimla, a red alert has been issued today for Chamba, Kangra, Mandi and Sirmaur districts, warning of heavy to extremely heavy rainfall. An orange alert has been issued for Una, Hamirpur, Kullu, Shimla and Solan, while a yellow alert remains in force for Bilaspur, Kinnaur and Lahaul Spiti districts. The department has warned that the prevailing weather conditions may trigger landslides, flash floods and cloud bursts. People have been advised to stay away from rivers, streams and landslide-prone areas and to avoid unnecessary travel. In view of the red alert for heavy rainfall, the district administrations of Kangra, Chamba and Sirmaur have ordered the closure of all educational institutions today. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
8: Uttarakhand has been experiencing continuous rain since yesterday morning, affecting the life of both plains and hilly regions. The schools and colleges in most of the districts remain closed and administration remains vigilant in view of the alert. More from our correspondent.
4: According to the Met Department, a red alert for heavy to very heavy rainfall has been issued for Dehradun, Tehri Garhwal and Haridwar district, whereas orange alert for Uttarkashi, Nainital, Champawat, Pauri and Udhamsingh Nagar and yellow alert for Rudraprayag, Chamoli, Almora, Bageshwar and Pithoragarh. In view of the rain alert, holiday has been declared for schools and all the Aganwadi centers in most districts today. Considering the Met Department's alert, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed all departments to remain vigilant. Relief and rescue teams are instructed to be fully prepared and all possible assistance to be provided to the affected people in a timely manner. He has also urged the public and pilgrims to follow the advisory issued by the Met Department and the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
8: Almost all districts of Uttar Pradesh are experiencing moderate to heavy rainfall, disrupting normal life across the state. More from our correspondent.
5: 5 people, including 4 children, were killed after an old building collapsed due to heavy rain in Muzaffarnagar district. 5 others sustained injuries and have been admitted to a hospital for treatment. An old temple also collapsed in Sant Kabir Nagar district. However, no casualties or injuries were reported in the incident. Heavy rainfall has affected normal life in several districts, including the state capital Lucknow, with waterlogging and traffic disruptions reported from many areas. The Meteorological Department has issued an orange alert for several districts of the state. The department has forecast that the prevailing weather conditions are likely to continue for the next 3 days. The Tarai region and parts of Bundelkhand are expected to receive heavy rainfall over the next 24 hours. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
8: The U.S. Central Command said it has launched a new wave of military strikes against Iran, marking the 9th consecutive night of operations. In a social media post, the U.S. Central Command said a new wave of strikes against Iran began last night and will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz, thus deepening tensions at the strait further. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised Indian nationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for the time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. On to sports. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. More from our correspondent.
13: Spain have won the World Cup.
2: After a tense and fiercely contested 90 minutes ended goalless, Torres finally broke the deadlock in the 106th minute. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. With its victory, Spain became the first nation to simultaneously hold the World Cup crowns in both men's and women's soccer. The French striker Kylian Mbappe is now the owner of World Cup Golden Boots in FIFA World Cup 2026. He became the first player to finish as the leading scorer at multiple World Cups, winning his second Golden Boot Award when Lionel Messi was blanked in Argentina's 1-0 loss to Spain in the final. Spain captain Rodri not only got to raise the FIFA World Cup trophy, but was also named the best player of the tournament, receiving the Golden Ball Award. Golden Globe Award was won by Une Seaman of Spain, while Young Player Award went to his teammate Pau Kubarsi. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
8: In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed the three-match series 2-1 at Lord's in London last night. Despite Rohit Sharma's magnificent score of 138 runs, Shubman Gill's 77 and Virat Kohli's 74, India only managed 360 for 7 in pursuit of a mammoth target of 388, built on the back of a career-best 142 from Ben Duckett and 91 from Jacob Bethell. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethell was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel.
13: Thank you, Shagun. The Asian Age informs Shah to introduce Rajya Sabha Vande Mataram Protection Bill today. Armenia and Saudi Arabia, among six nations eyeing India's battle-tested Astra missiles, headlines the Hindu Business Line. In its editorial piece titled Two Pillars of Space Success, Hindustan Times writes, robust talent pipeline will ensure India's continued public sector success and spur private sector momentum in the space sector. From punching above its 8 weight with a low-cost Mars orbiter mission to establishing itself firmly in the club of elite space-faring nations with its superstardom, India has enough claims to space superstardom. Also, India became the third country in the world after the US and China to have private sector capacity in orbital launch, a critical threshold demonstrating technological sophistication. Hindustan Times headlines Sindhu ends two-year title drought in style, adding the 31-year-old become first Indian to win Japan Open, combining relentless attack and tactical discipline and composure. And finally, coming soon in Gujarat, a life-size Harappan town with markets, dockyards. Very soon, visitors to Lothal, one of the most prominent outposts of the Indus Valley civilization, will be able to get a feel of walking through the Harappan streets and civic spaces, informs the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
8: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माई सांधू से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
15: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताबिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
14: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा

0: हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और ना ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकी इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेसिनाउ में मालदोवा की अपनी हम मनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामनिगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाजत नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमे मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सुरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट

0: और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोड़े खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नजर कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
2: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिकार से।
0: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनहदिम होने से चार बच्चों समेत पांच अफराद हलाक हो गए, जबकि पांच दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताजा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताजा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिजाइल और ड्रोन के जखीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाजी की हालिया शिद्दत के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए एक ताजा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफर मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खोज करें और इसके लिए वो जो भी परवाजें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपनी जाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +989128109105, +989128109109, +989128109102 और +989932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टोरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलाकवामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है माया, संगीत है सलील चौधरी का और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है अनाड़ी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में भीगी पलकें फिल्म का ये गीत। संगीत था जुगल किशोर और तिलक राज का और गीत लिखा था एमजी हशमत ने। और अब कार्यक्रम का गीत आपको जो सुनवा रहे हैं वो है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है गोरा और काला। धुन तैयार की है इस गीत की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत है आनंद बख्शी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गोरा और काला का ये गीत। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनुरोध से, आवाज है किशोर कुमार की। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राजा और रंक। इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत है आनंद बख्शी का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 9:15 होने को है अगला प्रसारण। लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: गत दिनों चंदौली के राजकीय आईटीआई कॉलेज रेवसा में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप पहल के अंतर्गत एक दिवसीय स्टार्टअप कार्यशाला तेजस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्टमेंट यूपी, स्टार्टअप इन यूपी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर BHU और जिला प्रशासन चंदौली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र माल्यार्पण कर किया। जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जनपद में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। कार्यशाला में स्टार्टअप इन यूपी की ओर से आए प्रशांत रंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। विगत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 3,55,00,000 की लागत से नव निर्मित उप निबंधक एवं AIG निबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नए और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कार्यालय भवन के बन जाने से अब आम जनता को रजिस्ट्री और स्टाम्प संबंधी कार्यों में बड़ी सहूलियत मिलेगी। गत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर स्थित महिला उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण अध्यक्षा चित्रा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पर सेनेटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। विगत दिनों चंदौली में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं से आयोजन विभाग अनिल राजभर ने चकिया के जलेबिया मोड़ के पास वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद वासियों से इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। उन्होंने पीपल, पाकड़ और बरगद के 3 पौधे का एक साथ रोपण कर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। उन्होंने कहा कि केवल पौध लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चंदौली के नियंताबाद में स्थित तालाब पर पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने आम अमरूद का पेड़ लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभी कर्मचारियों व आमजन से प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उससे अधिक पौधों को लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है। चंदौली में उर्वरक की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में आ रहे मामले पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि
2: एक एक किसान को उनकी जमीन के आकार पर जरूरत वही के आधार पर खाद उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी किसान भाइयों से और रिटेलर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्धारित दर पे ही उर्वरक की बिक्री करें और अपने अभिलेखों पे उसका जो है अंकित करें, और जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल को अपने अभिलेख पे अंकित करें। इस एक सीजन के लिए एक हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP एक किसान के लिए अनुमन्य है। इसलिए कोई भी किसान भाई किसी भी भ्रम में न रहे, पर में पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसको बराबर निगरानी बनाए हुए हैं।
1: उन्होंने किसानों से अपील की कि जैव विविधता व मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरित खाद का अपने खेतों में इस्तेमाल करें।
0: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
3: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं उन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के सीखने की क्षमता, विषयों की समझ एवं शिक्षा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जनपद की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद मुख्यालय के आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर का 155वां स्थापना दिवस समारोह MLK पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक, साहित्य, सामाजिक सरोकार एवं प्रतिभा सम्मान से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से 1 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ PM श्री कंपोजिट विद्यालय दुसाह में जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण विस्तार एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश उठो बढ़ो, हाथ मिलाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ तथा एक पेड़ माँ के नाम रहा। जिले में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सदर विधायक पलटू राम ने किया। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
4: सामाजिक सुरक्षा कवच ये सीधे सीधे हम किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से कवर्ड करके उनके सीधे सीधे परिवार को लाभ दिलाने की योजना है। बहुत कम प्रीमियम में हम किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम करते हैं।
3: जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में वायलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों के चयनित 44 ग्रामों के समग्र एवं सतत विकास हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इन ग्रामों को विभिन्न विकास मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित 10 प्रमुख इंटरवेंशन क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिले में संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से जनसामान्य को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बाढ़ के दृष्टिगत तहसील बलरामपुर सदर में संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि
5: हमारे यहाँ टोटल 19 कार्ड बनाने हैं और 32 कार्ड चौकी है। इसमें एक टोल फ्री नंबर जारी है 1077। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता किसी भी समय, न सिर्फ बाढ़ के टाइम में, अन्यथा किसी भी स्तर पे अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है आपदा से संभावित, तो वो इस पर सीधे बात कर सकते हैं और वो हम तक पहुँचेगी। हम शीघ्र ही उनको सहायता।
3: जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों पर विशेष जन जागरूकता एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वीर विनय चौक, बलरामपुर सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं गीता पंत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत गीता पंत के गाए रुहेलखंडी लोकगीतों का, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं गीता पंत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत कार्यक्रम धरती गाती है मैं। और श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसमें आपको सुनवा रहे थे गीता पंत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके साथी रिमझिम वलूनी
1: और फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम है आपके पत्रों पर और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित। तो हमारे श्रोताओं के बहुत सारे पत्र हमारे हाथों में हैं और मैसेजेस के लिए हम अपने श्रोताओं को नंबर बता देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 9457078288। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे और कुछ श्रोता लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपके मैसेज हमें मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार हमें मैसेज भेजने का जो सिलसिला शुरू किया है वो रुक ही नहीं रहा है। रिमझिम जी, ये पहला मैसेज कहाँ से आया है?
0: ये पहला मैसेज आया है मोहल्ला हलवायान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: जी हाँ, हमारे साथ आसिफ चौधरी साहब, बेगम रिहाना, रफा चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी भी जुड़े हैं। आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है शाही मार्केट स्योहरा ज़िला बिजनौर से। एक और मैसेज हमें मिला है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से। भेजने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।
0: जी, और ये पत्र हमें मिला है मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। पत्र भेजने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य।
1: जी हाँ, एक व्हाट्सएप मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज है नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। भेजने वाले हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं सोहन जोशी जी।
0: जी, तो सभी श्रोताओं की पसंद का हम ये गीत सुनवा देते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत है, फिल्म है हम आपके हैं कौन, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रम की आवाज़ में। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत लिखा है रविंद्र जैन ने।
1: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको जसपाल सिंह और हेमलता की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है नदिया के पार और संगीत और गीत है रविंद्र जैन का। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं श्रोताओं आप सभी। ये पत्र मिला है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया शोएब खान, मुस्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई। और गांधीबाग अकोला से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।
1: जी, हमें ये व्हाट्सएप मैसेज मिला है विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, आप हमें ये मैसेज भेज रहे हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से। और साथ में मैसेज किया है छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, सत्या इंगले और स्वराज विराज ने। एक और व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास है मोहाली पंजाब से, लिखने वाले हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला और उनके दोस्त। आपने हमें ये मैसेज भेजा है फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से।
0: बिलराम गेट कासगंज से ये पत्र हमें मिला है। भेजने वाले हैं एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। और यही गीत सुनना चाहते हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रामापुरी, बीके, कैलाशपुरी, नीलम और आरसेपुरी।
1: बागपत से हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और उनकी पोती भुवनेश्वरी देवी। एक और मैसेज हमारे पास मिला है, ये मैसेज भेजने वाले हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और श्री वैष्णव। आपने हमें ये मैसेज भेजा है तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से।
0: और ये पत्र हमें मिला है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और टिम्पल देवांगन।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है मगनपुर झारखंड से, लिखने वाले हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेटी बेबी निशा और उनके सभी दोस्त।
0: श्रीगंगानगर से ये पत्र हमें मिला है। भेजने वाले हैं बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा।
1: वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज बरेली से मैसेज कर रहे हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान।
0: तो आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत जसपाल सिंह और हेमलता की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है नदिया के पार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: स्वागत है आप सभी का श्रोताओं कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और अब जो गीत हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है वो हमने लिया है फिल्म दम लगा के हिंसा से, और आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। इसे संगीत दिया है अनु मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने।
2: इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
2: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। लिखने वाले हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और एक और मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का दंतरेगी से।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी।
2: ये व्हाट्सएप मैसेज आया है व्हाइट फील्ड बेंगलोर से। लिखने वाले हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु, संस्कृति, पौरुष और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र और कुलदीप कमल। एक और मैसेज हमारे पास है कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, साहिल और कमला रानी का। आपने हमें ये मैसेज भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से। एक और मैसेज हमारे पास है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम और आनंद का। आपने ये हमें मैसेज भेजा है पाकुड़ झारखंड से। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मैसेज भेज रहे हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत।
1: और ये पत्र हमें मिला है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह।
2: परिमहल काजगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरिफा खान, इल्मा खान और एम असलम सैफी। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ये मैसेज हमें किया है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। एक और मैसेज हमारे पास है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, ओम कुमार और सोपान ताइडे ने इसे लिखा है। एक और मैसेज आया है उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। आपने हमें यह मैसेज भेजा है तहसील औसा जिला लातूर से।
1: ये पत्र मिला है हमें चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता, संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी का।
2: लक्सर रोड गांव सुहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से हैं मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशा और पूरा परिवार।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया।

0: बेगम अंसारी सादिक और साजिद बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद।
1: एक और मैसेज हमारे पास आया है अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का। आपने हमें ये मैसेज किया है दाऊद सराय सहारनपुर से। एक और मैसेज हमारे पास है, लिखने वाले हैं ममता, संजय और बेबी किट्टू। आपने हमें ये मैसेज भेजा है खंडवा मध्य प्रदेश से।
0: तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। फिल्म है दम लगा के हंसा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पिघलता आसमान से। आवाज है किशोर कुमार और अलका याग्निक की। धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है माया गोविंद ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी मेन रोड तेलारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर और साहिल पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद सईद अब्बासी का। साथ में है निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। आपने हमें ये मैसेज भेजा है बुलंदशहर से। एक और मैसेज हमारे पास है और ये मैसेज है कालानौर से, हैं लिखने वाले नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
0: इसी गीत को पसंद कर रहे हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। डोंगार गांव छत्तीसगढ़ से मैसेज भेजने वाले हैं राधिका, बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। एक और मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्य। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से आपने हमें ये मैसेज भेजा है। एक और मैसेज हमारे पास आया है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। आपने हमें यह मैसेज किया है छत्रपति संभाजी नगर से।
0: और इसी गीत की फरमाइश के लिए ये पत्र हमें भेज

0: है इंदिरा विहार रायगढ़ से। भेजने वाले हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम, आदिबा।
1: क्षितिज रस्तोगी, हर्ष रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, गगन रस्तोगी, सम्यक रस्तोगी, चिराग रस्तोगी, श्रेया रस्तोगी और रीना रस्तोगी ने हमें मैसेज भेजा है शिवाजी मार्केट अफजलगढ़ बिजनौर से। गुड्डू सिंह यूपी बिजनौर हिदायतपुर से हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज से जुड़े हैं और ये मैसेज है हमारे पास, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। एक और मैसेज हमारे पास है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, आपने हमें मैसेज किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। एक और मैसेज हमारे पास है अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से आपने हमें ये मैसेज भेजा है। पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से एम ताहिर और एम उजैफ ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने हमारे साथ जुड़े हैं इस गाने के लिए और ये गीत सुनने के लिए।

0: दावर।
1: तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में। ये गीत फिल्म है पिघलता आसमान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, वो हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 9457078282।

0: 88। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और इनकी प्यारी बिटिया सोनम सारिमपुर बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं। सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से इस गीत को सुनना चाहते हैं लाल बाबू दीवान और दिव्या भारती।
1: इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज किया है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने धनौरी तेलीवाला से। फतेहनगर शेरकोट से राहुल इलेक्ट्रीशियन, मोंटी भाई भट्टे वाले, आपने हमें मैसेज किया है और इस गीत को सुनना चाहते हैं। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, आपने हमें ये मैसेज किया है बागरी मोहल्ला रटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से।
0: और ये पत्र हमें मिला है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से इसी गीत को सुनना चाहते हैं वलीउल्ला फ़कीर, डब्लूउल्ला फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर, और बुलंदशहर से वद्रु वली अंसारी, फ़र्ज़ु वली अंसारी और फ़र्ज़ी वली अंसारी ने इस गीत की फरमाइश हम तक भेजी है।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, आपने हमें ये मैसेज किया है। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से आपने हमें मैसेज किया है। कोमल मेहरा, कृष्ण मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, आपने हमें मैसेज कर रहे हैं सभी लोग, दादरी गेट भिवानी से। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
0: और इसी गीत को पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा।
1: अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने हमें मैसेज किया है। और मन भावन नैना, सत्यनारायण प्रकाश, कपिल, शोभा, फुंदी बाई बागरी ने हमें मैसेज किया है रटलाई ज़िला झाड़ावाड़ राजस्थान से, आप हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है सोनाली, आशा और सुरेश नारंग का सहारनपुर से
0: जी। और
1: भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई मंसूरी और फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी ने हमें मैसेज किया है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवैद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुमन खान हमारे साथ जुड़े हैं और आप सब जुड़े थे हमारे साथ मारहरा दरवाज़ा एटा से। एक और मैसेज हमारे पास है यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह का सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और प्रमिलागंज आलोट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा और प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने हमें ये मैसेज भेजा है। और एक और मैसेज हमारे पास आया है गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू सागर, सीताराम, अंशिका और तमन्ना कांगड़ा का, ये मैसेज हमारे पास है
0: जी। ये पत्र हमें मिला है डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका और बेबी अनिष्का और तन्मिया गजबिये का।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज रिमझिम जी, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कई बार हमारे श्रोता हमें
0: जी
1: पुनः बार बार मैसेज कर रहे हैं, यदि उनका नाम नहीं आ पा रहा है तो वो इससे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं कि जितना भी स्क्रॉल कर पाएं और मोस्ट ऑफ आपके सभी जो है मैसेज हम पढ़ लेते हैं, तो कृपया करके दोबारा मैसेज ना करें। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हीं मैसेज में से आपके मैसेज को फिल्टर करें और उन्हें छाट के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया बार बार हमें मैसेज ना करें।
0: तो ये मैसेज हमें मिला है
1: अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार बुढ़ ढाला वंडशिंगी महाराष्ट्र से आपने हमें मैसेज किया है। रजाक मोहम्मद, शमीमा बेगम, इमरान खान और इरफान खान हनुमानगंज टाउन राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, मोनिका और चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक ने हमें मैसेज किया है। और नगीना से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा, आपने हमें मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने हमें मैसेज किया है। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण, साहिल, विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी, सनावत से शेख मूसा, मोहसिन और एक और मैसेज हमारे पास है, ये पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल, उषा, टिल्लू और मधु नायक का।
0: तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और कार्यक्रम में अगला गीत यानी कि अंतिम गीत जो आपको सुनवा रहे हैं उसे पसंद करने वाले हैं आप सभी, और वो गीत है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली। इस गीत की धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने, और इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने वार्ड नंबर पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।
1: गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आपने हमें मैसेज भेजा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, और जयपाल यादव, राघवेंद्र, रागिनी, दिव्यांशी और चंद्रेश ने हमें मैसेज भेजा है जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से। एक और मैसेज है हमारे पास, ये मैसेज है नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनास, सलमा नाज, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी का।
0: और इसी गीत को पसंद कर रहे हैं प्रमीलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से पत्र भेजने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
1: 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना, मराठा देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी। और एक और मैसेज हमारे पास है, ये मैसेज है सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से आपने हमें मैसेज भेजा है, रघुवीर नगर से दिलावर खान,
0: हसीना बानो
1: और अलीजा नायाब ने हमें मैसेज भेजा है। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था शर्मिली और इसे संगीत दिया था SD बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे नीरज ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की अपने साथी रिमझिम बलूनी
1: और मुझे यानी फैजुर रहमान को श्रोताओं दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म आरजू का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोता, और कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म मासूम का ये गीत अनूप घोषाल की आवाज़ में। आर डी बर्मन का संगीत है और गीतकार हैं गुलजार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मासूम का ये गीत अनूप घोषाल की आवाज़ में। आरडी बर्मन का संगीत था, गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म सागर का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। आरडी बर्मन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। तो लीजिए, पेशे खिदमत है श्रोताओं फिल्म सागर का ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सागर का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। आरडी बर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोताओ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओ, कार्यक्रम में आइए अब शामिल करते हैं एक और गीत फिल्म आरजू से। श्रोताओ, आइए अब शामिल करते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है अनजाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम में फिल्म अनजाना का ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें थीं, शंकर जयकिशन का संगीत था और गीतकार थे आनंद बख्शी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म बाजार से, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ है, खयाम का संगीत है, गीतकार हैं बशर नवाज़।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म बाजार का ये गीत। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में खय्याम का संगीत था और बशर नवाज के बोल थे। इसी के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT और कार्यक्रम का श्रोताओं आज आप सुनेंगे भाग 1331।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।

0: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440

0: 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
1: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
3: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
3: क्यों दे दूं?
5: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
3: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।

0: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
2: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
2: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
2: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
4: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
4: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
1: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
7: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
4: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
0: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। कार्यक्रम का आज आपने सुना भाग 1331। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से रिले किया जाएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से हमारे श्रोता सुन सकेंगे आज शाम 8:30 पर, और गीत संध्या कार्यक्रम होगा आज शाम 8:15 पर। संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आज शाम 8:00। सुगम संगीत में 7:32 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। आज शाम 7:20 पर लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत का समय रहेगा आज शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में वार्ता सुनवाई जाएगी। शीर्षक होगा खड़ी बोली का क्रमिक विकास। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी, और कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा हरे चारे वाली फसलों की देखभाल, साथ ही होगी भेंटवार्ता। शीर्षक होगा मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय। इस संदर्भ में श्री नरेश कुमार फार्म मैनेजर मशरूम फार्म बढ़िया से बातचीत करेंगे हमारे साथी प्रमोद सिंह। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज शाम 5:15 पर। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, लव स्टोरी और बूस्टर्स। संध्याकालीन सभा में ही शाम 5:00 कार्यक्रम होगा मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में महिला उद्यमों के लिए अवसर पर जानकारी दी जाएगी। शीर्षक होगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम।

नई फिल्मों के गीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे। आज दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज दिन में 1:45 पर। कलाकार होंगी अनीता सिंघल। परिवार जगत, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, साथ ही जानकारी दी जाएगी। विषय होगा विश्व शतरंज दिवस और स्थलीय रिकॉर्डिंग में मानसून और पौधारोपण, प्रकृति से हमारा रिश्ता, इस संदर्भ में बातचीत होगी। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे मोहन सिंह रावत का संतूर पर बजाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित व द्रुत 3 में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संतोष कुमार पांचाल।

अभी आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना मोहन सिंह रावत का संतूर पर बजाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित व द्रुत तीन ताल में इबत थी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संतोष कुमार पांचाल। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म जहर से। इस गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने। रूप कुमार राठौर का संगीत है। गीतकार हैं सईद कादरी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्रेया घोषाल को, फिल्म थी जहर। रूप कुमार राठौर का संगीत था और सईद कादरी के बोल थे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में, अनु मलिक का संगीत था और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। कार्यक्रम में आइए अब शामिल करते हैं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म सिंह इज़ किंग से। राहत फ़तेह अली खान, श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, प्रीतम का संगीत है और मयूर पुरी के बोल हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना राहत फ़तेह अली ख़ान और श्रेया घोषाल को फिल्म सिंह इज़ किंग में। प्रीतम का संगीत था और मयूरपुरी के बोल थे।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में निखिल विजय का संगीत है और गीतकार हैं फैज अहमद फैज।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म तुम बिन का ये गीत। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, निखिल विजय का संगीत था और गीतकार थे फैज़ अहमद फैज़। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम में 314.47 मीटर 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seel, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the 0 hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है जीव मात्र का कल्याण होता है और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे.
2: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharata mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharata mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Talkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम परिवार जगत और मैं हूं आपकी रेडियो सखी दीप्ति माहेश्वरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष दिन की जो केवल विज्ञान प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, जिसे हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, जब भी हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो चमकता हुआ चांद हमारी कल्पनाओं, कविताओं, कहानियों और सपनों का हिस्सा बन जाता है। बचपन में हमने चंदा मामा की कहानियां सुनी, कवियों ने चांद की सुंदरता का वर्णन किया और वैज्ञानिकों ने उसके रहस्यों को जानने के लिए वर्षों तक अथक प्रयास किए। यही कारण है कि चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विज्ञान और भविष्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाने का उद्देश्य मानव इतिहास की उस उपलब्धि को याद करना है जब 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने। नील आर्मस्ट्रांग के वे ऐतिहासिक शब्द आज भी दुनिया भर में याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरी दुनिया को विश्वास दिलाया कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चयसंकल्प और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसी उपलब्धि की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मान्यता दी। प्रिय श्रोताओं, यदि हम भारत की बात करें तो हमारे लिए ये दिन और भी विशेष महत्व रखता है। इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के महत्वपूर्ण प्रमाण खोजे और चंद्रयान 2 ने कई वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके बाद चंद्रयान 3 ने वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला देश बनाया। ये उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और मेहनत की जीत थी। श्रोताओं, अक्सर आपने सोचा होगा कि आखिर वैज्ञानिक चंद्रमा पर ही इतनी शोध क्यों करते हैं। इसका उत्तर बहुत रोचक है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: अब बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
1: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
0: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, चंद्रमा पर बार बार वैज्ञानिक इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य में चंद्रमा अंतरिक्ष अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। वहां मौजूद बर्फ से पानी और ऑक्सीजन प्राप्त करने की संभावना है। भविष्य में ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन का आधार बन सकती है। इसके अलावा चंद्रमा पर पाए जाने वाला हीलियम-3 जैसा तत्व भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में साबित हो सकता है। यानी आने वाले समय में चंद्रमा केवल देखने की चीज नहीं रहेगा बल्कि मानव सभ्यता के अगले पड़ाव की नींव भी बन सकता है। आज अमेरिका, भारत, जापान, यूरोप और दुनिया के कई देश मिलकर ऐसे मिशनों पर काम कर रहे हैं जिनका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आने वाले वर्षों में वे वहां वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। प्रिय साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमें ये भी सिखाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होता। विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। अंतरिक्ष अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग आज मौसम पूर्वानुमान, संचार, कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हमारे देश के बच्चे विज्ञान, गणित और तकनीक के क्षेत्र में रुचि लें तो भविष्य में वे भी नए आविष्कार कर सकते हैं और भारत का नाम विश्व भर में रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमें एक और महत्वपूर्ण प्रेरणा भी देता है। वो हर रात अलग अलग रूपों में दिखाई देता है लेकिन उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन हमारा लक्ष्य यदि स्पष्ट हो और हमारे प्रयास निरंतर हों तो सफलता अवश्य मिलती है। यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी हमें देता है कि सपने देखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए और उन्हें साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। आइए इसी अवसर पर हम संकल्प लें कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित करेंगे, नई तकनीकों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने देश को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिक बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। हर छोटा कदम भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बरसात की हर बूंद धरती को नया जीवन देती है और यही मौसम पौधा रोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक छोटा सा पौधा आज लगाकर हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और सुरक्षित पर्यावरण के अनमोल उपहार दे सकते हैं। इसी विषय पर आधारित एक स्थलीय रिकॉर्डिंग आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसका विषय है मानसून में पौधारोपण और प्रकृति से हमारा रिश्ता। संचालन कर रही हैं ज्योति पाल।
5: बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो केवल मिट्टी की सौंधी सी खुशबू ही नहीं बिखेरती बल्कि प्रकृति मानो हमें एक नई शुरुआत का संदेश भी देती है। यही वह समय है जब एक छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है। इसलिए मानसून का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र

0: पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, तब एक एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और समाज मिलकर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चला रही है। किस प्रकार से आमजन मिलकर वृक्षारोपण में सहयोग कर रहे हैं, जानने के लिए हमने बात की नजीबाबाद क्षेत्रवासियों से। हमने जाना कि वो पर्यावरण के विषय में कितनी जानकारी रखते हैं और किस तरह से वृक्षारोपण करते हैं, आइए जानते हैं।
1: हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका और मैं पीजी कॉलेज यूके की छात्रा हूँ। तो आज हम एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि ये मौसम बरसात का है। इस प्यारे से मौसम में हम जितने भी पेड़ पौधे लगाते हैं वे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी हरे भरे हो जाते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है। मैं अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाती हूँ। केवल बर्थडे पर ही नहीं, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पेड़ लगाती हूँ और अपने आसपास के लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती हूँ। कहते हैं कि बिगाड़ना आसान होता है और सुधारना मुश्किल, तो वही हम विकास के नाम पर पेड़ काट तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं। विकास के नाम पर पेड़ कटने ही नहीं बल्कि लगने भी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, अपना देश बचाए, अपना भविष्य बचाए। धन्यवाद।
2: मेरा नाम है इल्मा परवीन और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। वो विषय जो हमारे जीवन का आधार है, वो है पर्यावरण। पर्यावरण सिर्फ हमारे आसपास के माहौल का नाम नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शुद्ध वायु, फ्रेश वाटर और हेल्थी नेचर, जिसका हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल है, और अगर ये ना हो तो हमारा ज़िंदा रहना नामुमकिन है। पर बहुत अफसोस की बात यह है कि आज आधुनिक जीवन शैली में पॉल्यूशन, वेस्ट प्लास्टिक, नेचर रिसोर्स का बेवजह इस्तेमाल करना जो रोज़ बेरोज़ हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, और इस पर्यावरण के ख़राब होने के परिणाम भी आज हमारे सामने ही हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान, ई वेस्ट, ओजोन परत का ह्रास जैसी समस्याएं जो पर्यावरण से संबंधित है वो हमारे सामने हैं। पर एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे ही हाथों में है। तो हम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जैसे वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, और प्लास्टिक को यूज़ करने से बचना होगा, और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा, अपने आसपास के माहौल की साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हमें खुद को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना होगा और जागरूकता फैलानी होगी। तो हम सब मिलकर ये छोटे छोटे कदम उठाकर धरती की हरियाली को बढ़ा सकते हैं। हमारे ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धरती हमारी अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज ही हम खुद से एक वादा करें कि आज से हम ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में अपना योगदान करेंगे, जो कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
3: मैं सुनीता रमाजन से, मैं BBA की सहायक पद पर कार्यरत हूँ। मैं पर्यावरण के लिए आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो समय चल रहा है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है, बहुत प्रदूषित हो चुके हैं। इस विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को प्रयासरत होना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण हमें स्वच्छ मिल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश किया जा सके। इसके लिए मैं खुद भी पर्यावरण के लिए उत्तरदायित्व निभा सकती हूँ और हम सभी को निभाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे लगाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रोत्साहित करें पेड़ पौधे लगाने के लिए। पूर्व समय में कभी नजीबाबाद से बिजनौर जाते हुए बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे, जिसमें जामुन, आम के पेड़ बहुत अत्यधिक मात्रा में थे। फ्लाईओवर बनने के कारण जो हमारी उन्नति के लिए भी ज़रूरी है वो पेड़ काटे जा चुके हैं, फिर भी एक आम नागरिक होने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। मौसम में आम, जामुन, अमरूद इत्यादि के पेड़ यदि हम लगाते हैं तो वो हमारे लिए फलदायी बनते हैं। कृपया कर उनके बीजों को जहाँ आपको जमीन खाली प्लॉट्स अगर आप लगा सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें लगाइए, ताकि वो आने वाले समय में हमें फलदायी हो और हमारी पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पे मिल सके।
0: तो देखिए, सभी अपनी ओर से प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, पौधा रोपण कर रहे हैं, चिंतित हैं आने वाली पीढ़ी के लिए और प्रयासरत हैं हरियाली के लिए। अब आमजन से जानकारी के बाद हम पहुंचे रश्मि अग्रवाल जी के पास और हमने उनसे जानकारी ली पर्यावरण के बारे में। वे समाज सेविका होने के साथ साथ पर्यावरण प्रहरी भी हैं। जन जन को अपनी लेखनी से जागृत करने के साथ साथ स्वयं भी इस धरा को हरा भरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं।
4: मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है और मैंने 2011 से लेखन कार्य शुरू किया। वो भी ये बताना जरूरी है कि वो भी व्हील चेयर पर बैठकर मैंने कलम को अपना हथियार बनाया। और 2015 में मैंने एक पुस्तक पर्यावरण और हम लिखी, क्योंकि हमारे घर में जो है वो बहुत ज्यादा हरा भरा घर है और पेड़ पौधे बहुत है, तो शुरू से मैं ये देखती आई हूँ। तो वो पुस्तक ये सोचकर तो नहीं लिखी थी बिल्कुल भी कि भाई ये इसको कोई पुरस्कार मिलेगा, और फिर भी मैंने उसको जो है वो भारत सरकार के जो ये पुरस्कार हिंदी सेवा पुरस्कार निकलता है वहां भेजी, और वहां पर इसका चयन हो गया और इसको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया मेरे इस पुस्तक को। तो उसके बाद पर्यावरण से एक जैसे कहते हैं ना कि लगाव हो गया बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने 5 पुस्तकें पर्यावरण पर भी लिखी और भी लिखी पुस्तकें, तो और विषय पर भी लिखी, पर ये विषय पता नहीं क्यों मुझको छूता आया अंदर तक। मैं घर की हरियाली देखकर या फिर जो भी समझ लीजिए बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं वैसे कई बार लिख भी चुकी हूँ कि देखिए बरसात में इसलिए पौधे लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि जो बरसात का पानी है ना वो एक तरह से अमृत है पेड़ों के लिए, जैसे कहते हैं ना गंगा जल, वो उस तरह से है। तो अगर हम सही जगह, सबसे पहली बात तो मैं एक थोड़ा सा ये और आपको बताना चाहूंगी कि हम जैसे एक अभियान चलाते हैं कि भाई इतने लाख पेड़ हमें लगाने हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि हर पेड़ की अपनी अलग स्वभाव होता है, उसको अलग जमीन चाहिए, अलग तरह से खाद चाहिए, मौसम चाहिए। तो ये जरूर सोच लें कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो वहां के लिए उपयुक्त है या नहीं। और बरसात में लगाने का ये फायदा होता है कि बरसात में अधिकतर पेड़ चल जाते हैं, खराब नहीं होते, क्योंकि उनको बारिश का पानी मिलता है। पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बारिश का पानी उनको मिल रहा है तो आप उनको पानी उस तरह से ना लगाएं कि पानी बहुत ज्यादा हो जाए और वो गल जाए। मतलब पानी की भी पहचान है, मैं बताऊं क्या पहचान है, कि आपके पास गमले हो या धरती हो, आप उसकी मिट्टी को हाथ पे लगा के देखिए, अगर उंगली पर चिपकती है तो पानी की जरूरत नहीं है, पर उंगली से बिल्कुल जैसे एक पाउडर की तरह खिसल जाती है तो पानी की जरूरत है। अगर आप ये वाला टेस्ट करके पानी लगाएंगे तो आपका कभी भी कोई पेड़ खराब नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा उसको सूखा सा देखा और तीसरे चौथे दिन पानी डाल दिया, लेकिन वो मिट्टी बहुत गीली होती है अंदर तक, तो ज्यादा पानी की मात्रा से वो पेड़ गल जाता। हाँ देखिए, मैं इसके ऊपर, बल्कि आपने चिंगारी में पढ़ा भी होगा शायद, मेरा बहुत बड़ा एक विस्तृत आलेख आया है, पहले भी मैं बहुत लिख चुकी हूँ कि हमारा ये जो हम अभियान चलाते हैं ना सिर्फ कागज भरने के लिए होता है, इसमें ऊपर से नीचे तक बहुत भ्रष्टाचार होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब से पेड़ खरीद शुरू होती है और जब तक वो नीचे आते हैं बीच में पता नहीं कितने लोग होते हैं। आप खुद बताइए कि एक दिन में अगर मैं ही अकेली ये चाहूँ कि मैं 1000 पेड़ लगाऊंगी तो 1000 पेड़ मुझे तो पता भी नहीं होगा कि वो बाद में चले या नहीं चले, बताइए कौन जाके देखता है बाद में उनको, या कभी ये संख्या आपके सामने आई कि इतने पेड़ वहां चल रहे हैं, आज तक नहीं आई। और सिर्फ अभियान छोड़ के पूरे देश में होड़ लग जाती है, तहसील में पेड़ों की लाइन लग जाती है, वहां से लोग उठा के, और एक सबसे बड़ी बात फोटो खिंचवाने की है, एक पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ कहीं लग रहा है, मुंह कहीं है हमारा। तो ये जो चीज है ना, ये दिखावा बहुत हो गया है। आप 4 पेड़ लगाओ लेकिन वो 4 पेड़

0: उपलब्ध होंगी, लेकिन जब लगाएं तो ये सोचकर लगाएं कि जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे ही हमें इस पेड़ का पालन पोषण करना है, हमें दिखावा नहीं करना है, और अपने चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध रखें। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, साफ सफाई वो भी रखें, वो बहुत जरूरी है कि हमने अपने घर की गंदगी बाहर डाल दी तो वो आप पर्यावरण को नष्ट करा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर से निकलती हैं, पहले उनको हम अनुशासित करें, तब हर व्यक्ति अगर ये सोच ले ना तो पर्यावरण पे जो आज इतनी परेशानियां, इतना प्रदूषण हो रहा है, ये होगा ही नहीं। होता क्या है, ये सोचते हैं अरे हमारे करने से क्या होगा, एक के करने से क्या होगा, एक एक के करने से ही चीज बनती है
1: जी।
0: तो होगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विषय को उठाया और मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, सभी को अपनी ओर से प्रयास करना होगा। कोई भी एनजीओ या सरकारी प्रयास कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रत्येक जन अपनी ओर से प्रयासरत नहीं होगा। एक पेड़ लगाएं और वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल अवश्य करें। ना जाने कितने पक्षियों का उसमें बसेरा हो, ना जाने कितने राहगीरों को वो छाया दे। श्रोताओं, आज की सार्थक बातचीत से यही संदेश निकल कर आता है कि प्रकृति से हमारा रिश्ता केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्म का होना चाहिए। मानसून का ये सुहाना मौसम हमें एक सुनहरा अवसर देता है कि हम धरती को फिर से हरियाली की चादर ओढ़ने में अपना योगदान दें। याद रखिए, एक पौधा आज का नहीं आने वाले कल का विश्वास है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम केवल एक पेड़ नहीं उगाते बल्कि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, पक्षियों का आशियाना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार करते हैं। आइए इस वर्षा ऋतु में हम सभी संकल्प लें कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, उसकी नियमित देखभाल करेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इस हरित अभियान से जोड़ेंगे, क्योंकि जब धरती हरी भरी होगी तभी हमारा जीवन भी खुशहाल और सुरक्षित होगा।
3: अभी हम सुन रहे थे एक स्थलीय रिकॉर्डिंग, आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। श्रोताओं, बरसात की फुहारे जब धरती को हरियाली से उड़ा देती हैं तो हर रास्ता जैसे नई उम्मीदों और नई ताजगी से भर जाता है। ऐसे सुहाने मौसम और प्रकृति की इसी खूबसूरती को शब्दों और सुरों में समेटे सुनते हैं प्यारा सा एक गीत।

श्रोताओं, अभी हमने सुना प्यारा सा एक गीत। गीत सुनकर आप सभी का मन भी प्रसन्नता से भर गया होगा। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको भिन्न भिन्न जानकारियां देते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एक ऐसे खेल की जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और रणनीति का भी प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व शतरंज दिवस की, जो हर वर्ष 20 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस मनाने का उद्देश्य इस प्राचीन खेल के महत्व को लोगों तक पहुंचाना और युवाओं को इसकी ओर प्रेरित करना है। 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की स्थापना हुई। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 20 जुलाई को आधिकारिक रूप से विश्व शतरंज दिवस के रूप में मान्यता दी। श्रोताओं, शतरंज केवल मोहरों को चलाने का खेल नहीं है, बल्कि ये सोचने, योजना बनाने और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सिखाता है। ये खेल हमें सिखाता है कि हमें धैर्य, अनुशासन

बल्कि ये सोचने, योजना बनाने और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सिखाता है। ये खेल हमें सिखाता है कि हमें धैर्य, अनुशासन में भी हर चाल का असर भविष्य पर पड़ता है। इसलिए ये खेल बच्चों से लेकर

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यही संपन्न होता है। अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में बुंदेलखंडी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थी अनीता सिंघल। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में अंग्रेजी में समाचार होंगे।

के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा

इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यही संपन्न होता है। अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में बुंदेलखंडी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थी अनीता सिंघल। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मालदोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।
6: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम नई फिल्मों से में अभी आपने सुना गदर टू फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब शामिल करते हैं एक और गीत श्रोताओं, और ये गीत है फिल्म मिशन मजनू से। जुबीन नौटियाल की आवाज़ है, तनिष्क बागची का संगीत, गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओ। और आइए आप सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। प्रीतम का संगीत है, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल सिंह चड्ढा से ये गीत। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, राम संपत का संगीत है और प्रशांत पांडे के बोल हैं।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म लापता लेडीज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्त्री 2 से, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज़ें हैं। संगीत निर्देशन है सचिन जिगर का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

अभी आपने सुना फिल्म स्त्री टू का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म सैयारा से। फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ है, तनिष्क बागची का संगीत, इरशाद कामिल के बोल हैं।

फिल्म सैयारा के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेणु राजपूत का नमस्कार। और श्रोताओं, आज के इस आधुनिक युग में यदि महिला काम करती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन स्तर अच्छा होता है। साथ ही बच्चों की बेहतर शिक्षा, मकान या आपातकालीन बचत जैसे लक्ष्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। जब महिला बाहर जाकर काम करती है तो बाहर की दुनिया देखने और काम करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अर्थात जब घर में एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार मजबूत बनता है, इससे समाज सशक्त होता है और राष्ट्र को भी मजबूती मिलती है। आज हम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजना स्टैंड अप इंडिया के विषय में बात कर रहे हैं। श्रोताओं, स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की योजना है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया। यह भारत सरकार की एक पहल है जो महिलाओं और SC ST वर्ग के लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यह लोन केवल पहली बार नया बिजनेस शुरू करने के लिए ही मिलता है। श्रोताओं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लाभार्थी को अपना स्वयं का निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। लाभार्थी द्वारा इस ऋण राशि को अपने व्यवसाय पर खर्च करने का पूरा अधिकार होता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय, उद्योग, औद्योगिक घरेलू उत्पाद, खुदरा सेवा क्षेत्र में बड़ी ही आसानी से निवेश किया जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ उठाने के लिए वाले व्यक्ति महिला को वित्तीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही संबंधित उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा दिया जाता है। इस प्रशिक्षण से रोजगार करने में आसानी होगी, जिससे उन्हें व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी और यह अपने पूर्ण मनोयोग से एक सफल उद्यमी बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से लोग प्रोत्साहित होकर आत्मनिर्भरता की ओर आकर्षित होते हैं। श्रोताओं, इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र महिला उद्यमी सीधे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकती हैं या स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय होगा मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय। इस विषय पर नरेश कुमार से प्रमोद सिंह की बातचीत। साथ ही चर्चा का विषय होगा हरे चारे वाली फसलों की देखभाल। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय होगा खड़ी बोली का क्रमिक विकास। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी। आज शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे भजन। कलाकार होंगे पुनीत मेहरा। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर, संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 6:30 पर। चिंतन सवेरे 6:40 पर। नरेंद्र वर्मा का काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत सवेरे 6:45 पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में कल 7:05 पर जानकारी का विषय होगा जल ही जीवन का आधार है। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा धान की फसल में खैरा रोग का नियंत्रण, समय होगा सवेरे 7:10।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का प्रसारण होगा सवेरे 7:31 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बाढ़ के बाद की चुनौतियों से कैसे निपटें। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रोहिलखंडी लोकगीत। बहनों का कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया जाएगा 1:15 पर। कल क्रम होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी का। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत कल शाम 5 प्रसारित किया जाएगा। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5:15 पर। क्रम होगा दिल से दिल तक और बूस्टर का। कल शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे वार्ता भारत की विदेश नीति के नए आयाम। वार्ताकार होंगे अजय कुमार मित्तल। समय होगा कल शाम 6:45। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे जगजीत सिंह की गाई गजलों का। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00। आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शेरे नशिस्त कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: आवाज पे बस जाए अगर दिल की कहानी, तो हर गीत लगे अपनी ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो की महफिल में, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। और आज आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आज प्रोग्राम में शिवानी और आप सभी के साथ जुड़ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त उज्मा। वैसे दोस्तों, कहते हैं कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसासों से कही जाती है।
0: जी हाँ, और जब दिल की धड़कनें आवाज बन जाती हैं, तब हर गीत सिर्फ गीत नहीं रहता,
1: बल्कि दोस्तों वो गीत हमारी अपनी कहानी बन जाता है। और आज का ये जो सफर शुरू होने वाला है, वो कुछ ऐसे ही नगमों के नाम रहेगा। अगर दोस्तों कोई ऐसा गाना है जो आपकी जिंदगी के किसी खास पल से जुड़ा है,
0: या किसी अपने की याद दिलाता है, या बस आपके दिल के बहुत करीब है, तो हमें कॉल कीजिए और बताइए वो कौन सा खास गीत है।
1: और कॉल से दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज है हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा, जिसमें आप हमसे फोन कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं।
0: और हमारा फोन नंबर है दोस्तों 9457078288। आप हमसे कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा।
1: वैसे शिवानी, एक और जरिया भी है प्रोग्राम में शामिल होने का, हमारे डेली सेगमेंट बूझो तो जाने के सवाल का जवाब देकर।
0: लेकिन उसके लिए उस्मा, सबसे पहले हमारे दोस्तों को जानना होगा आज का सवाल। और दोस्तों, सवाल है हमारा, ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कौन सी थी?
1: जी हाँ, और इसका सही जवाब आपको देना है हमारे एफवी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और जरूरी चीजें बता दें दोस्तों, आज है मंडे और हमारे स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा के साथ साथ और भी कुछ स्पेशल सेगमेंट्स हैं, जैसे कि पहला है लव स्टोरी, जिसमें आज आप सुनेंगे लव स्टोरी अनकहा रिश्ता, जिसका आज आप सुनेंगे पहला यानी एपिसोड नंबर 1। और इसी के साथ एक और बड़ा ही खास और जानकारी से भरपूर सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल, जिसमें आज आप सुनेंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड। लेकिन अब प्रोग्राम को शुरू तो करना ही है, तो चलिए शुरू कर देते हैं कुछ जरूरी संदेशों के साथ।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: वेलकम बैक दोस्तों, कुछ खास है आज में। आज हम बात करेंगे उस गेम की जिसमें सिर्फ हाथ नहीं बल्कि हमारे और आपके दिमाग की जिम भी होती है।
3: जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, जो कि हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है।
2: ये दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की याद में मनाया जाता है।
3: और दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि चेस सिर्फ बोरिंग लोगों का गेम है, तो ब्रो तुम्हारा एल्गोरिथम अपडेट होने की जरूरत है।
2: बिल्कुल, चेस मतलब नो लक नो चीट कोड, सिर्फ जो इसमें है स्ट्रेटजी, पेशेंस और स्मार्ट मूव्स।
3: चेस हमें सिखाता है कि गलत चाल चल दी तो कोई बात नहीं, अगली चाल सोच समझ कर चलो। मतलब रियल लाइफ भी चेस जैसी ही है दोस्तों।
2: रुको रुको शिवानी, एक सवाल है और वो तुमसे ही है। अगर लाइफ चेस जैसी होती तो तुम कौन सा हिस्सा बनना पसंद करती?
3: मैं तो भाई किंग ही बनती,
2: मतलब हमेशा सेफ। हाँ। वाह भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। दोस्तों, चेस खेलना सिर्फ गेम खेलने जैसा नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना है। इसमें आपके दिमाग का पुर्जा खुल जाता है।
3: दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग चेस खेलते हैं? आज के दिन स्कूलों, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
2: भारत ने भी दुनिया को कई शानदार चेस खिलाड़ी दिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है।
3: कई लोग सोचते हैं कि चेस सिर्फ टाइम पास है, लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि लगातार चेस खेलने से कनेक्शन बढ़ता है और मेमोरी भी बेहतर होती है।
2: बिल्कुल, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा शिवानी। और दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मजबूत होती है, डिसीजन मेकिंग तेज होती है, पेशेंस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
3: और दोस्तों, इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य है कि शतरंज के खेल को बढ़ावा देना, लोगों में तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता विकसित करना।
2: तो दोस्तों, आप भी आज उठा लीजिए शतरंज और शुरू कर दीजिए खेलना ये गेम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने एक और बहुत ही खास, जिसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं, उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है लव स्टोरीज। जी हाँ, आज आप सुनेंगे एक ऐसी ही लव स्टोरी जो आज से शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है अनकहा रिश्ता, जिसका आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 1, जिसे प्रेजेंट किया है हमारी ही साथी शिवानी ने।
4: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी साथी शिवानी। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज। जी हाँ, आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो शायद आपको अपने किसी खास इंसान की याद दिला दे। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जिसे हमने कभी ठीक से जाना नहीं, कभी अपना कहा नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल के बहुत करीब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिससे हमारी मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन उसकी मौजूदगी हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, आज आप ऐसी ही कहानी को सुनने वाले हैं जिसका नाम है अनकहा रिश्ता। जी हाँ, अनकहा रिश्ता। नई जगह, नई जॉब, नए लोग, सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों। लेकिन जो लोग अपने शहर से दूर रहते हैं वो जानते हैं कि सबसे मुश्किल होता है दिन खत्म होने के बाद रूम में लौटना, जब चार दीवारें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं और बात करने के लिए कोई होता ही नहीं। और ऐसे ही लाइफ स्पेंड कर रही थी एक लड़की नैना। उसके दिल में ढेर सारे सपने और आंखों में अपने मम्मी पापा से दूर रहने की आदत डालने की कोशिश। सुबह 8 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे वापसी, रास्ते भर ट्रैफिक और रूम में पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी और फिर मोबाइल हाथ में लेकर बिना वजह स्क्रॉल करते करते सो जाना, यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन चुकी थी। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी और उस दिन उसका ऑफिस में भी बहुत बुरा दिन गया था। उसने यूं ही मोबाइल में FM ऑन कर दिया। कुछ सेकेंड तक गाना चला, फिर एक आवाज़ सुनाई दी RJ आर्यन की। अगर आज का दिन आपके हिसाब से नहीं गुजरा तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी ज़िंदगी हमें रोक कर सिर्फ इतना सिखाती है कि हम उससे ज़्यादा मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। नैना चुप हो गई। उसे लगा जैसे यह बात किसी और की नहीं बल्कि उसी से कही गई हो। पहली बार किसी अनजान इंसान की आवाज़ उसे अपनेपन जैसे लगी। शो के आखिर में RJ आर्यन ने कहा, अगर आज आप किसी बात से परेशान हैं या सिर्फ दिल हल्का करना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक मैसेज किसी और की भी हिम्मत बन जाए और इस मैसेज को शामिल करेंगे कल के शो में। नैना ने बहुत देर तक मोबाइल हाथ में पकड़े रखा, कई बार टाइप किया, फिर कई बार डिलीट भी किया। आखिर में उसने सिर्फ एक लाइन लिखी। उस लाइन में लिखा था, क्या कभी किसी अजनबी की आवाज़ भी घर जैसी लग सकती है। मैसेज भेजकर उसने फ़ोन रख दिया। वैसे दोस्तों, क्या RJ आर्यन उस मैसेज को कल पढ़ेगा या नहीं, या क्या वो जान पाएगा उसकी आवाज़ किसी की ज़िंदगी का सहारा बन चुकी है। दोस्तों, ये जानेंगे कल यानी ट्यूसडे को हमारे अनकहा रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है कहानी में ये आप कल यानी ट्यूसडे को जरूर सुनिएगा। तो उज़्मा अब अपने दोस्तों के इंतजार को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं हमारा और हमारे दोस्तों का फेवरेट सेगमेंट गपशप अड्डा।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो जी, कौन बात कर रही हैं?
4: मैं ग्राम गनौरे जिला से तारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
3: तनुश्री?
4: हाँ
3: जी। कैसी हैं आप?
4: जी मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसी हैं?
3: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, और स्वागत है आपका प्रोग्राम युववाणी में।
5: और शिवानी, तुमने एक चीज नोटिस की हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में? इतनी प्यारी सी आवाज, तो प्रोग्राम तुम क्या सोचती हो
3: वाकई
5: बहुत अच्छा होने वाला है।
3: वाकई उज्मा,
4: थैंक यू मैम, और आपसे बात कर मुझे बहुत बढ़िया लगा।
5: इस बात के लिए आपका बहुत बहुत तनुश्री जी। तो तनु, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी और थोड़े बादल हो रहे हैं, आप बताएं।
4: मैम हमारे यहाँ तो सुबह से धूप निकल आई है, कल हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, पर आज तो अभी तक नहीं हुई, और रात में होगी तब मतलब अच्छा है हमारे लिए बारिश होना।
5: अच्छा,
4: पर बारिश अभी
5: तो ये
4: हो रही।
5: इधर जो बादल और बूंदा बांदी हो रही है शिवानी, मुझे लगता है हमारे इन दोस्त ने ही इधर बादल भेजे हैं।
4: अरे हमारे यहाँ बारिश आएंगे ना तब आपके यहाँ भेजेंगे, आपके यहाँ जब आएंगे ना तो हमारे यहाँ भेजेंगे।
5: जी बिल्कुल, आपसे पक्का प्रॉमिस रहा। तो तनुश्री जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
4: मैम

0: जी तनुश्री जी, बिल्कुल हम वाकई साथ साथ हैं। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: ओके बाय बाय।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ।
3: अरे देखने में तो तुम भाई हट्टे कट्टे लग रहे हो।

0: लाचार किस चीज से हो?
1: अरे देखने में ही तो हट्टा खट्टा हूँ, लाचार तो मैं अपनी आदत से हूँ।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं नॉलेज से भरा सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल के साथ, और जिसमें आज हम सुनेंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड को, और जिसे प्रेजेंट किया है हमारी साथी उज्मा ने।
1: हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स पैसा वसूल, वो सेगमेंट जहां हम सिर्फ किताबें नहीं खोलते बल्कि अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपियाड। अब नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है कि अरे भाई ये तो टॉपर्स का गेम है। लेकिन रुकिए जरा दोस्तों, आज इस पूरे कंफ्यूजन का फोल्डर हम मिलकर डिलीट करने वाले हैं। सबसे पहले ओलंपियाड आखिर होता क्या है? देखिए, अगर स्कूल की परीक्षा आपको ये बताती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, तो ओलंपियाड ये बताता है कि आपका दिमाग कितने स्मार्ट तरीके से सोचता है। यहाँ सिर्फ याद किया हुआ नहीं चलता, यहाँ चलता है लॉजिक, थिंकिंग, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी के लेस रट्टा और मोर दिमाग का डाटा। अब ये इंटरनेशनल क्यों कहलाते हैं? सिंपल, ओलंपियाड एग्जाम दुनिया के कई देशों में आयोजित किए जाते हैं, यानी आपकी सोच सिर्फ अपनी क्लास तक नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बच्चों की सोच से भी तुलना की जा सकती है। कितना कूल है ना ये, एक तरह से योर ब्रेन गोज ग्लोबल। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है, दुनिया भर में ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए जो सिर्फ आंसर याद नहीं करते बल्कि क्वेश्चन से भी आगे की सोचते हैं, यानी फ्यूचर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और फ्यूचर गेम चेंजर्स को पहचानने के लिए ओलंपियाड शुरू किया गया। इसका मिशन सिर्फ मेडल देना नहीं बल्कि हिडन टैलेंट को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाना है। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड यानी IMO 1959 में रोमानिया से शुरू किया गया था। उस वक्त सिर्फ 7 देशों ने हिस्सा लिया था और आज 100 से भी ज्यादा देश इसमें भाग लेते हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रेन बैटल बन चुका है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैथ्स वालों की पार्टी है तो जरा रुकिए भाई, ओलंपियाड होते हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, जनरल नॉलेज में, कंप्यूटर में और हिंदी में भी। मतलब हर बच्चे के लिए कोई ना कोई मौका जरूर है। और इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, इससे ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। सवालों से डरना नहीं, उन्हें हराना सिखाया जाता है। दूसरा, थिंकिंग पावर बूस्ट होती है। और तीसरा, स्कूल एग्जाम भी आसान लगने लगते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस, NCERT अच्छे से पढ़िए, पजल और लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रीवियस पेपर देखिए। मिस्टेक से फ्रेंडशिप तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि फेलियर इज नॉट गेम ओवर, इट्स लोडिंग नेक्स्ट लेवल। और दोस्तों, ओलंपियाड सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं और हार कर भी बोलते हैं। वन मोर क्वेश्चन, आपको पता है दोस्तों, 2026 में इंडिया ने ऐसा कमाल किया कि पूरी दुनिया बस यही बोल रही है, वाह क्या बात है। और अब ऐसा क्या कर दिया, तो आपको ये मैं बताती हूँ भाई। इंडिया ने कुल 14 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल शामिल हैं, जिनमें से फिजिक्स ओलंपियाड में 5 गोल्ड के हैं और केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4 गोल्ड के हैं और बायोलॉजी ओलंपियाड में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। है ना कमाल, मतलब साइंस के तीनों बड़े सब्जेक्ट में भारत का जलवा ही जलवा है। अब सवाल ये है कि ओलंपियाड तक पहुंचा कैसे जाए? रिलैक्स, सिंपल है, लेकिन लेकिन लेकिन इजी भी नहीं। इंटरनेशनल ओलंपियाड में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 स्टेज क्लियर करनी पड़ती है। ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस HBCSE और IAPT करवाते हैं। हर स्टेज के साथ कंपटीशन और टफ होता जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और स्मार्ट थिंकिंग नहीं छोड़ते, आखिर में वही पहनते हैं टीम इंडिया की जर्सी और दुनिया के मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। याद रखिए दोस्तों, शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू टीम इंडिया। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
0: तो उसमें देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है।
1: हेलो हेलो,
4: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है हमारी?
4: जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
1: जी मकसूद हुसैन जी, कैसे हैं आप?
4: मैं

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सुनवाते हैं आपको और आपके दोस्तों को ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद मैम।
2: Story, but everybody will sing with me.
3: Okay.
2: Ready?

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: बाबा प्रणाम। प्रणाम बालक प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ?
3: वो बाबा, मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद है बाबा, मैं उसे कैसे इम्प्रेस करूं कि वो मेरी हो जाए?
2: देख बालक, पहले तू ये पता कर कि उसे क्या पसंद है, और जब तुझे ये पता चल जाए कि उसे क्या पसंद है तो फिर उसे वो ला कर दे दे, देखना तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, वो तुझसे खुश हो जाएगी।
3: लेकिन बाबा।
2: क्या लेकिन?
3: बाबा उसे तो एक दूसरा लड़का पसंद है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों, प्रोग्राम तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हमने आपसे प्रोग्राम में पूछा था एक सवाल, साथ में अपने उन साथियों के नाम भी शामिल किए लेते हैं। तो हमारा सवाल था, ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कौन सी थी, जिसका सही जवाब है कहो ना प्यार है। और जिसके सही जवाब देने वालों के नाम हैं पुंजाजी नावकर, अनिल विनोचा, नाना खन्ना, राष्ट्रपाल गजबे, हीरामणि वर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र छीपा, मोहम्मद अफजल ताज, बीआई धाकड़, उत्तम कुमार भगत, निसार सलमानी, जागीर मंसूरी, बलेश पवार, प्रवीण सोनी, नवी हसन अब्बासी, राम कुमार रेवाड़, विजय सुलेरकर, गजानन येले, शमसुल कमर। और हमारे अगले साथी हैं खलाश, अगले साथी हैं मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अनजान, राजेश वर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, मुजफ्फर अली खान, मोहम्मद जाहिद अली, शाहरुन नूर अंसारी, धीरज भाई राबड़ी, सुरेश गंगनेजा, मोहम्मद हुसैन पवार। तो दोस्तों, अब अपने जो हमारे अगले साथी हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चलिए कर लेते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल। हेलो।
5: हेलो,
6: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते जी, कौन से साथी हमसे बात कर रहे हैं?
6: मैं कश्मीर से, कश्मीर सोनमर्ग से लतीफ अहमद रैना।
4: कश्मीर से सोनमर्ग से बात कर रहे हैं सर, आपका नाम?
6: लतीफ अहमद रैना।
4: लतीफ, कैसे हैं आप?
6: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है दोनों मैडम?
4: जी बिल्कुल। तो
5: उसमें कितनी खुशी की बात है ना कि इतनी दूर से भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं,
4: और कितनी खूबसूरत जगह से, सोनमर्ग से।
6: हाँ, सोना में यहाँ पे सुबह बारिश गिरा था, अभी मौसम सुहाना हो गया।
4: हाँ वाकई, बारिश के बाद तो वहाँ का मौसम, वहाँ पे पहाड़ों में और घाटियों में वैसे भी बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है। तो आज आपकी कॉल लगी, कैसा लग रहा है आपको?
6: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ अभी आपके साथ बात हुआ।
4: जी तो आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश है आज आपकी?
6: आज लता मंगेशकर की आवाज में कोई भी गाना चलाए,
4: कोई भी गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।
6: हाँ, कोई भी गाना, उनकी आवाज बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा है
4: जी। वाकई उनकी आवाज वाकई बहुत सुरीली है। तो चलिए
5: हम आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, उम्मीद है आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा।
4: बिल्कुल, और हमारे साथ कॉल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो
1: हाँ जी, हेलो फ्रेंड।
0: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बाहर लसन सिद्दीक वाला मैम।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं मैम। आज वक्त मिला तो फोन भी लगा लिया आपको।
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आज आप
1: और
0: प्रोग्राम में
1: यहाँ का
0: शामिल हो।
1: मौसम कैसा मैम?
0: जी बाहरुल जी, यहाँ का मौसम ऐसा है, कभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी है, कहीं थोड़े काले बादल हैं, कहीं मौसम साफ है, बस थोड़ी धूप नहीं है। आप बताएं,
1: हाँ
0: आपके यहाँ
1: देखिए
0: का मौसम कैसा है?
1: देखिए, जिला अमरोहा पतेई खालसा का मौसम जो है 2-3 दिन से बादल हो रहे हैं, और आज सुबह भी बारिश हुई थी, दोपहर भी बारिश हुई थी।
0: जी बिल्कुल,
1: तो
0: बारिश और बादलों की
1: मौसम
0: तो वैसे भी जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी थी। जी
1: और इस टाइम भी बादल ही है, तो मौसम अच्छा है,
0: धूप से
1: ठंडा
0: सुकून मिल रहा
1: मौसम
0: है। बिल्कुल, तो
1: है।
0: आज
1: तो
0: आपने
1: अच्छा,
0: प्रोग्राम में कॉल लगाई है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा फूल और कांटे। और देखिए, बरसात का मौसम है तो एक गाना हो जाता है इसी फिल्म का, तो पहली बारिश और मैं तू, तो अच्छा लगता। या फिर इसके अलावा इसी फिल्म का कोई भी गीत सुनवा देना आप। और घर के कुछ नाम थे मैम,
0: जी जी
1: जैसे
0: बताइए।
1: मोहम्मद आलम सिद्दीकी है, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी है, बिटिया लीसा सिद्दीकी, सिवान सिद्दीकी, नाबिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, अतीक तौफीक, दानी सिद्दीकी, मेज प्रेम से, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दूल्हापुर मुर्दाबाद से, मुकेश कसर जी हैं और राशिद अंसारी हैं।
0: तो चलिए आपके और आपके दोस्तों की और आपके फैमिली के लिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें ख़त के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे ख़त आपको हमें ख़त भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कॉमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथ ही शिवानी
0: और उस्मा को दीजिए कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

0: बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपके भैया प्रमोद सिंह
1: और आपके भैया अंकित कुमार की
0: राम राम। अरे अंकित भैया, कैसे हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक तू?
1: भैया हम तो ठीक ठाक हैं। तुम बताओ थारे कैसे हाल चाल हैं?
0: सब ठीक है भैया। देखो धान की रोपाई है भाई, धीरे धीरे करके वो भी पूरी होती जा रही, किसान भाई भी इसमें लगे हुए ही हैं। और भैया तुमने भी ये काम तो पूरा कर ही लिया होगा?
1: हाँ भैया देखो हमने भी कल निमटा लिया है। तुम बताओ
0: अच्छा
1: थारा भी हो गया पूरा? नहीं
0: हाँ भैया, धान की रोपाई का काम तो पूरा हो ही गया। अब भैया देखो, यू बरसात का मौसम है भाई, इस बरसात के मौसम में भाई, चाहे वो घरों में हो, घरों के आसपास हो, या भैया बाहर हो कहीं,
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: साफ सफाई का ध्यान रखने की बड़ी जरूरत पड़े
1: देखो
0: करे।
1: भैया साफ सफाई अगर हम रखेंगे तो भैया हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: अगर भैया हम अपने आसपास या अपने घरों में गंदगी रखेंगे तो भैया एक तो मच्छर मक्खी पैदा होंगे, और मच्छर मक्खी पैदा होंगे तो भैया बीमारी बढ़ेंगी।
0: अब देखो भैया, इस बरसात के मौसम में जगह जगह भैया पानी इकट्ठा हो जा, उस पर मच्छर पनपे हैं, और भैया फिर उनसे जो है बहुत सारी बीमारी लगने का खतरा बना रह करे।
1: बहुत भैया ऐसे संक्रामक रोग हों जो भैया हम जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, तो भैया उनसे हम बचाव करना जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। और भाई इस मौसम में पीने के पानी का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: भैया देखो
0: भैया साफ पानी पीना चाहिए हमेशा।
1: बिल्कुल भैया पानी को पीना है साफ, और भैया जल का संरक्षण भी हमें करना चाहिए।
0: भाई देखो, जल का संरक्षण भी करना चाहिए, और जो भैया स्वस्थ रहने की बात हम कर रहे हैं ना, स्वस्थ तो भैया हम तभी रह सके हैं जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखेंगे, बासी खाना नहीं खाने के,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया
0: भैया देखो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे।
1: बिल्कुल भैया। और भैया एक बात और, भैया बरसात का समय चल रहा है इस टाइम,
0: हाँ
1: और भैया जैसे तेज हवा तेज बारिश, और कभी कभी भैया ऐसा हमारे किसान भाई रहे कि तेज हवा के साथ अपने पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं या
0: हाँ
1: कभी बिजली के खंभे के पास खड़े हो जाएं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: भैया इन ऐसी जगहों में बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना।
0: यू तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई भैया। देखो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, और सावधानी तो हमें जब भी बरतनी चाहिए भैया जब हम खेतों पर को जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि भैया बरसात का मौसम है, डॉलों पर को हम चले जा रहे हैं, तो भाई बहुत सारे जहरीले कीड़े, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, भैया निकलने का तो खतरा बना ही रहे।
1: बिल्कुल भैया देखो बरसात का समय है, ऐसे में तो ये चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि भैया हर जगह पानी होता है और ये जाती हैं ऊपर की ओर सूखे की ओर।
0: ठीक कह रहे हो भैया। तो देखो किसान भाई बड़े समझदार हैं, सारे काम बड़ी समझदारी के साथ में कर रहे हैं, और भैया हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बिल्कुल टाइम से पहले तैयार रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया देखो जब हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो भैया खेती से लाभ भी कमाते हैं।
0: बिल्कुल लाभ कमावे हैं। और देखो भाई, जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है, तो आज के कार्यक्रम में हम किसान भाइयों से बात कर ही रहे हैं, आगे भी बहुत सारी बातचीत हम किसान भाइयों से करेंगे। और भैया मशरूम उत्पादन के संबंध में एक जानकारी किसान भाइयों को दिलवाएंगे, और
1: अच्छा
0: मनोरंजन
1: भैया
0: तो भैया हो गई
1: बिल्कुल भैया हम अपने हमारे जो किसान भाई हैं उनका मनोरंजन आराम से करवाएंगे।
0: है ना। तो देखो ये सब तो सुनेंगे, पहले भैया ये कुछ संदेश है हमारे पास में, पहले इन्हें सुन ले हैं।
1: बिल्कुल भैया
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
5: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
4: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
5: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
4: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: संदेश तो हमारे किसान भाई भैया सुन लिए।
1: बिल्कुल भैया, संदेश तो देखो सुन ही लिए। और भाई हम बात यूं कर रहे थे कि भैया बरसात का मौसम है, साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम भैया बहुत सारे काम भी कर रही हैं, लेकिन भाई अपने साथ साथ जो हमारे पशु हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो गया करे भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखो पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं, तो भैया अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ साथ पशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखना।
1: सही कह रहे हो। और भैया इस बरसात के मौसम में भाई सबसे पहले जो बात है, जैसे हम अपने घरों में साफ सफाई रखे हैं, घरों के आसपास साफ सफाई रखे हैं, वैसे ही अपने पशुओं की जो पशुशाला उसकी साफ सफाई रखें,
0: बिल्कुल
1: और भैया पशुओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत हो करे।
0: बिल्कुल भैया, देखो विशेष ध्यान जब रखेंगे जब हम अपने पशुओं को संतुलित चारा देंगे।
1: भाई तुमने बात तो एकदम ठीक कही। अब भाई संतुलित चारा हम अपने पशुओं को खिला रही हैं, भाई दुधारू पशुओं की भी हम अच्छी तरीके से देखभाल करें, और भैया जो हमारे दूसरे जो पशु हैं गाय भैंस के साथ साथ जो हमारे बैल हैं या भैया दूसरे बकरी उकरी हैं, तो
0: बकरी
1: भाई देखो
0: है
1: हम सभी की देखभाल तो ढंग से कर रही
0: बिल्कुल।
1: हैं, और इस टाइम पे भाई देखो हरे चारे की कमी ना होए करती।
0: बिल्कुल भैया, देखो बरसात का समय है, हमारे किसान भाइयों ने देखो मक्का बो रखी हो, बाजरा बो रखा है, ज्वार
1: हाँ
0: बो रखा,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: भैया
1: जी
0: कमी तो है ना भैया। अब तो एक ऐसा आ गया नेपियर घास भैया, 12 महीने उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल, वो तो भैया पूरे साल मिलती रह कर है। तो देखो जो आपने जो ये बात कही कि भैया हमारे किसान भाइयों ने बाजरा मक्का लोबिया ज्वार ये सारी फसलें जो है चारे के रूप में बो रखी, और भैया बहुत अच्छी ये चल भी रही हैं। भैया बरसात में पानी की तो कमी होती ना है, लेकिन फिर भी भाई हमें जरूरत है इन सब फसलों की ठीक तरीके से देखभाल करने की।
0: बिल्कुल भैया, देखो बरसात में अगर हम बात करें तो भैया देखो पानी की तो कमी होती ना है, कभी कभी ऐसा हो कि बारिश ना होती तो भैया हमारे किसान भाई 7-8 दिन के अंतराल पर अगर बारिश नहीं होती तो भैया सिंचाई कर सकते हैं हल्की।
1: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भैया, उसमें खरपतवार हो जाए हैं उनको भी हम नियंत्रित कर सके हैं, साथ ही भाई हमारी ये चारे वाली जो फसलें हैं ये ठीक ठाक खड़ी रहें, उसमें भैया हम नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सके हैं।
0: बिल्कुल भैया, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो फसलों में रोग कीट भी आ जाता है, तो भैया उसका भी समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है।
1: और भैया देखो रोग और कीटों की जहां तक बात है, तो ये तो हम तभी कर सके हैं जब हम सही तरीके से निगरानी करेंगे
0: बिल्कुल
1: और उनके लक्षणों को हम पहचान के जो हमारे कृषि के वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करके भैया अगर हम उचित दवा का छिड़काव करेंगे तो भाई देखो हम इस समस्या से भी निजात पा सके हैं।
0: बिल्कुल भैया भैया, कभी कभी ऐसा होता है बरसात के मौसम में कि बारिश ज्यादा होती है तो हमारे जो चारे की फसलें हैं उसमें पानी खराब हो जाता है, तो
1: हाँ,
0: भैया पानी की निकासी हमें करते रहना है।
1: और भैया अगर पानी भर गया तो हमारी फसल की जड़ें गल जाएंगी, हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, पशुओं को हरा चारा सही तरीके से नहीं मिलने का, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी।
0: बिल्कुल भैया
1: इसलिए भाई चारे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठीक देखभाल की जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: और चारे की पौष्टिकता बनी रहे इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल भैया, अगर चारे की पौष्टिकता हमारे बनी रहेगी तो भैया हमारे पशु उसे खा कर अच्छा दूध देंगे, और भैया लाभ हमारे पशुओं को भी होगा और भैया किसान भाइयों को भी होगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, देखो ये लाभ की बात है, सारी बातें हो ही रही, और भैया लाभ तो गीत संगीत से भी हुआ है ना।
0: हाँ बिल्कुल भैया, देखो दिन भर की जो थकान है अब अगर हम गीत संगीत सुनते हैं तो उतर जाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई आओ पहले थोड़ा सा यो भैया गीत संगीत का आनंद लियो ले हैं और सुनो ले हैं यो हरियाणवी लोकगीत।
0: बिल्कुल भैया।

0: गड्डे आड़ी गजभर छोरी। भैया यू हरियाणवी लोकगीत तुम्हारे भाइयों ने सुना, भाल सिंह की आवाज में। और भाई देखो सबको पसंद आया होगा। और भैया देखो अब तो किसान भाइयों की थकान दूर होने लगी होगी।
1: बिल्कुल भैया, देखो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा जो अभी कार्यक्रम में बताया था कि हम जानकारी भी लेके आए हैं, और भैया हमारे किसान भाई इंतजार भी कर रहे होंगे।
0: अब देखो भैया जहां तक इंतजार की बात है, तो देखो हमें भी बात कर रहे थे कि भैया हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पौष्टिक चारा खाना चाहिए, साफ सफाई का जो है भैया ध्यान रखना चाहिए, मतलब पौष्टिक आहार हमें लेना
1: बिल्कुल भैया,
0: चाहिए, है ना। और पौष्टिक चारे की जहां तक बात हम कर रहे थे, तो भैया अपने पशुओं को पौष्टिक चारा देना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, ये बात तो हो ही रही थी।
1: बिल्कुल भैया,
0: देखो भाई अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भैया सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होनी बहुत जरूरी हुए करे।
1: बिल्कुल भैया। देखो जैसे प्रोटीन हो भैया, फाइबर हो
0: हाँ
1: और कैल्शियम हो भैया, ये सब हमें मात्रा में, सही सही मात्रा में मिलने
0: भाई
1: चाहिए।
0: सब पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे। और भाई देखो इन सब की पूर्ति करने के लिए हम दाल चावल रोटी सब्जी दूध इन सब चीजों का सेवन तो करें ही है,
1: बिल्कुल भैया,
0: ना। और भाई किसान भाई इन सब के साथ साथ मशरूम का नाम तो तुमने सुना ही
1: हाँ
0: होगा,
1: हाँ भैया बिल्कुल, वो तो भैया प्रोटीन से भरपूर मात्रा में हुआ
0: बहुत
1: है।
0: पौष्टिक हुआ है, तो अगर हम मशरूम का भी भैया सेवन करना शुरू कर दें, जो कर रही हैं किसान भाई, तो भैया स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता भी खाने में बनी रहेगी। और अगर उसकी खेती करनी किसान भाई शुरू कर दें, हमारे
1: तो
0: किसान भाई बहुत से कर भी रहे हैं,
1: बिल्कुल भैया, वो तो एक पन दो काज हो जाएंगे।
0: एक पंथ दो काज हो जाएंगे, अच्छी आमदनी हो जाएगी। लेकिन भैया देखो बात यू आवेगी, किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई मशरूम की खेती हम करके कितना लाभ कमा सके हैं, यो काम कैसे कर सके हैं, यो बात तो सोच रहे होंगे ना।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो भैया सोचने की बात बिल्कुल ठीक है, आज इसी संबंध में हम एक जानकारी लेकर आए।
1: बिल्कुल भैया, और जानकारी का विषय है मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय।
0: और इस संबंध में भैया हमने नरेश कुमार फार्म मैनेजर से बात करी थी, जो कि मशरूम फार्म बढ़िया में भाई मशरूम का काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल भैया,
0: तो उनसे हमने बातचीत करी थी। कहो तो भैया ये बातचीत हम आपको भी सुनवा दें और अपने सब किसान भाई और बहनों को भी सुनवा दें,
1: नेकी और पूछ पूछ।
0: तो ठीक है आओ सुनते हैं भैया यो बातचीत।
1: बिल्कुल भैया,
2: आज हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी एक मशरूम के बहुत बड़े प्लांट को देखते हैं और इनका बहुत अच्छा यहाँ पर काम है, और इनके इस प्लांट पर ही आज इनसे हमारी बातचीत हो रही है। तो नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: हाँ जी
2: नरेश जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मशरूम की हम बात कर रहे हैं,
3: जी
2: किसान भाइयों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, ये मशरूम आखिर है क्या?
3: इसी मशरूम एक फंगस है, फंगस से ही हमारा, इसका कोई वैसे पेड़ पौधा नहीं होता है, फंगस से ही मशरूम फ्रूट बनना होता है, तो ये फंगस ही है। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ तीन प्रकार की मशरूम है जो बहुत अच्छी मार्केट में, अगर फार्मर बिना इसी के भी करना चाहते हैं तो ईयरली बार कर सकते हैं इस पर। जैसे बटन मशरूम हो गया तो 4-5 महीने का पीरियड इसका निकल जाता है,
1: अच्छा,
3: तो 15 से 20 डिग्री पे। इसके बाद ऑयस्टर आ जाती है, वो 20 से 25 पे होती है। एक वैरायटी जो और है मिल्की मशरूम, मिल्की मशरूम हमारी 25 to 35 डिग्री पे ग्रो हो सकती है।
1: जी जी जी
3: तो तीनों मशरूम अच्छी हैं, बिना एसी के भी कम खर्च में अच्छी आउटपुट अच्छा दे सकती
1: लगभग
3: है।
1: कितनी पूंजी की जरूरत

0: होती है इस काम को शुरू करने की?
1: पूंजी तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले छोटे से स्टार्ट करो, अपना 1-1.5 लाख से स्टार्ट करके अपना धीरे धीरे करके विकसित करो। हम ये भी एडवाइस नहीं देते कि जी बहुत बड़े स्केल पे करो, थोड़े थोड़े से करके अपना बढ़ाते जाओ। अच्छा, जैसे आपको मार्केट भी मिल जाएगी और अच्छा आपका आउटपुट भी अच्छी आएगी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: मशरूम की जो मतलब वेराइटीज है, वैसे तो 285 किस्में हैं मशरूम की, लेकिन जो यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो इसके कल्चर डेवलप हुए हैं, 15-20 वेराइटीज ऐसी है जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, जिनके कल्चर हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बटन मशरूम का प्रचलन है पूरे भारत के अंदर, बटन मशरूम हर जगह ग्रो हो सकती है।
2: जैसे आपने बताया कि हम बटन मशरूम पैदा कर सकते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बटन मशरूम पैदा करना चाह रहे हैं तो इसको करने के लिए किसान भाइयों को क्या करना होगा, किस चीज की जरूरत पड़ेगी?
1: बटन मशरूम के लिए असल में जो कंपोस्ट की विधि है, कंपोस्ट बनाया जाता है इसका, इसका सप्लीमेंट आपके पास जो मतलब वेस्टेज भी समझ लो आप, काउडंग हो गया और वेटेस्टर वगैरह जो भूसा वगैरह होता है, ये सभी फार्मरों के पास अवेलेबल होता है। अगर थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉक करके वो करें तो इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है और अच्छा काम कर सकते हैं।
2: इसको अगर हमारे किसान भाई पैदा करना चाह रहे हैं तो बटन मशरूम के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है?
1: बटन मशरूम के लिए मेन इसका कंपोस्ट होता है, इसका जो खाद बनाया जाता है, इसमें जो और न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाएंगे और सप्लीमेंट जितने भी हैं वो सप्लीमेंट होती है आधे ज्यादा कुछ चीज।
2: अच्छा, एक तो कंपोस्ट की जरूरत हमें पड़ती है
1: जी,
2: ये हम खुले में कर सकते हैं कि किसी बंद कमरे की जरूरत?
1: नहीं, इसके दो मेथड होते हैं, एक शॉर्ट मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है।
2: जी जी,
1: जो किसान भाइयों के लिए वो लॉन्ग मेथड भी कामयाब है।
2: नरेश जी, हम बात ये कर रहे हैं कि बटन मशरूम पैदा करने के लिए हमें कंपोस्ट तैयार करनी पड़ती है, उस कंपोस्ट को तैयार करने के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है?
1: सबसे मेन सप्लीमेंट तो हमारा जो रॉ मेटेरियल होता है भूसा होता है, गेहूं का भूसा हो, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी जो मस्टर्ड का हो गया और बगाश वगैरह पे भी हम वर्क कर सकते हैं जो इसका सप्लीमेंट है।
2: अच्छा
1: जी,
2: और क्या क्या चीज मिलाई जाती है इसमें?
1: और इसके अंदर हमारा जितनी भी नाइट्रोजन चीजें, इसके सीएन कार्बन नाइट्रोजन वाली जो जितनी भी हमारी चीजें, चोकर हो गया, मुर्गी खाद हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और काफी सारे सप्लीमेंट है इसका, मस्टर्ड डी ऑयल केक हो गया, जैसे सबसे ज्यादा जो जीएन में मिलता है मूंगफली की खल होती है, इसके बाद आ जाता है सनफ्लावर की, ये चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद आता है इसमें मस्टर्ड की, सरसों की खल आती है।
2: अच्छा,
1: तो वो भी मिलाई जाती है, कॉटन शीट हो गई, बिनोला वगैरह की खल मिला के, ये सब चीजें हम पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है।
2: कंपोस्ट को तैयार करने की विधि क्या है, कितने दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाती है?
1: जो लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाई जाती है इसमें 1 महीना लग जाता है, 1 महीने में इसके टेम्परेचर हमें लगभग 70-80 के बीच में करने पड़ते हैं, जिसे हम पाइस्चराइज करते हैं।
2: ये तो देखिए, मेहनत तो किसी भी काम को करने के लिए होती ही है, अगर हम खेती कर रहे हैं तो मेहनत उसमें भी होती है, मशरूम पैदा कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आपने कहा कि लगभग 1 महीने में ये कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर हमें मशरूम पैदा करने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए और क्या काम करने होते हैं?
1: हट से जैसे इसका टेम्परेचर हमें 15-20 के इन बिटवीन बटन मशरूम का जो पीरियड होता है इसी के बीच में ग्रो हो जाती है, तो ये हमारी अक्टूबर से लगभग मतलब कंपोस्ट आपकी सितंबर में तैयार होनी चाहिए, अक्टूबर से हम फील करना स्टार्ट कर दें।
2: अच्छा,
1: तो हट्स में जितना भी हमारा उस समय तो नेचुरली एनवायरनमेंट मिल ही जाता है, तो इसका लगभग ये समझ लो आप हम 8-10% ले सकते हैं हट्स के अंदर।
2: अच्छा
1: जी,
2: एक बैग से?
1: एक बैग से, बैग में भी भर सकते हैं, बेड में भी कर सकते हैं।
2: अच्छा, बेड में भी कर
1: जी
2: सकते हैं। तो इसके लिए जैसे भी आप हट की बात कर रहे हैं कि हम एक झोपड़ी में भी तैयार कर सकते हैं, अगर किसी किसान भाई के पास में झोपड़ी नहीं है, वो किसी कमरे में करना चाहता है, तो कितने बड़े कमरे की जरूरत होगी इस काम को करने के लिए? कम
1: कमरा तो अब यही है, कंपोस्ट के ऊपर डिपेंड है आप कितना वर्क कितना करना चाहते हैं, छोटे छोटे स्केल से भी आदमी धीरे धीरे करके आगे डेवलप करेगा, और हमारा जो यूपी क्षेत्र है ये तो काफी पीछे आ गया।
2: अच्छा,
1: सबसे ज्यादा तो हरियाणा क्षेत्र है आपका, जहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग कराई थी, सोलन वालों ने ही कराई थी, पूरा गांव का गांव उस काम को करता था, और अभी भी आज की डेट में भी हम लगभग 15-20 साल बैक है।
2: अच्छा,
1: और स्टेट की अपेक्षा सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा फार्मर बैठे हुए हैं, काफी लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं, उसके बाद अगर यहाँ फार्मर जागरूक होना चाहता है तो कर सकते हैं जी।
2: अच्छा, इसको कितने तापमान पर पैदा किया जा सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए?
1: ये 15-20 के बीच में ग्रो होता है जो इजी हो जाता है, और वो हमारा नवंबर से लगभग मिडिल नवंबर से टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो मार्च एंड तक हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं।
2: अच्छा देखिए नरेश जी, आपने बताया कि हमें किस किस से काम को करने की जरूरत होती है। आपने हट्स के बारे में बताया, आपने बताया कि हम इसको एक कमरे में भी कर सकते हैं, और जो हम बैग की बात कर रहे हैं और बेड की बात कर रहे हैं, ये बैग और बेड क्या है और ये कैसे तैयार करे जाते हैं?
1: बैग के अंदर इसमें बैग हमारा 10 kg का लगभग भरा जाता है, क्योंकि इसमें 8-10% लेनी होती है, लगभग 12 kg का होना चाहिए। इसे कम में करेंगे तो बेड के अंदर भी लगभग 1 फुट की हाइट पे भर के हम उसको लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, जो क्रॉप ले सकते हैं।
2: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बेड भी तैयार कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जैसे भी आपने कहा कि इसको हम अक्टूबर के महीने से लगभग कर सकते हैं, इसकी फसल ले सकते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो पूरे साल इसकी खेती करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है?
1: 15 से 20 डिग्री पे तो वो तो उसी समय मिलेगा, नवम्बर से मार्च तक मिल जाएगा। उसके बाद हमें 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिल पाता ना, तो फिर इसके लिए एयर कंडीशन प्लांट होता है, फिर एसी प्लांट पे ही जाना पड़ेगा। आप उसी से इसके टेम्परेचर मेंटेन करके ग्रो कर सकते हैं।
2: देखिए हमने मोटी मोटी वो सारी बातें आपसे ये जानी कि किस तरीके से हमें बटन मशरूम की खेती करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है
1: जी।
2: अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नरेश जी कि आप इस काम में कितने दिनों से लगे हुए हैं?
1: लगभग मैं 93 से लगा हूँ और अब तक इसी लाइन के अंदर हूँ।
2: अच्छा
1: जी,
2: तो 93 से तो आपको कई साल हो गए हैं और
1: लगभग
2: लंबा समय है।
1: जी,
2: ये आपका बहुत एक अच्छा अनुभव है। और जहाँ जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, ये प्लांट भी आपका काफी बड़ा है, यहाँ कितने बैग पर आप मशरूम पैदा कर रहे हैं?
1: यहाँ पर तो कम से कम भी हमारे पास 10 rooms है, लेकिन 1 bag का यहाँ जो मतलब इसी प्लांट बना हुआ है ना, ये बना हुआ है हमारा लगभग 60x18 में।
2: अच्छा,
1: तो ये 2500 से 3000 के बीच में बैग हमारे आ जाते हैं।
2: तो आपका तो हम समझते हैं कि डेली इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा?
1: बिल्कुल डेली होता है ये।
2: जी जी जी, देखिए बहुत अच्छी बात है और आप इस काम को कर रहे हैं, हमारे किसान भाई आपकी इस बात को सुन भी रहे हैं। और किसान भाई ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप जब 93 से इस काम को करना आपने शुरू किया, इसमें लगे हुए हैं, तो उस समय आपको क्या ऐसी ललक लगी कि आपको मशरूम की तरफ ही जाना है? आपने कोई इसका प्रशिक्षण वगैरह लिया था या इस क्षेत्र में आने के लिए आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली थी?
1: मेरी स्टार्टिंग बेसिक असल फील्ड तो मेरा दूसरा ही था
2: जी,
1: लेकिन इस लाइन में आना था मुझे, हरियाणा से स्टार्टिंग है मेरी, तो 93 में मैंने फिर हरियाणा ज्वाइन किया और तब से फिर यहीं पर हूँ।
2: हाँ।
1: और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आके भी 2008 में सबसे बड़ा वर्ग मेरा ही था।
2: अच्छा,
1: मैंने हट्स पे वर्क किया और मतलब है ये चल ही रहा।
2: तो आपके साथ में कुछ और किसान भी जुड़े होंगे जो आपके अनुभवों का लाभ उठा रहे होंगे, कितने किसानों को आपने इस क्षेत्र में लाए हो आप?
1: इस क्षेत्र में देखो आने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आदमी थोड़ा सा गन्ने की फसल या और किसी फसल पे ज्यादा डिपेंड है, वो करना नहीं चाहते
2: जी जी जी,
1: या इस फील्ड में उतरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मेनली जो है वर्क तो है, ये ध्यान रखने वाला है, 24 आवर्स का आपका वर्क है, इस पे जहाँ लापरवाही होगी वहीं पर थोड़ी बहुत, इसीलिए मशरूम को बोलते हैं कि ये कच्चा काम भी है, जहाँ पर आपकी नजर झुकी वहीं दिक्कतें आती है, और यहाँ का जो फार्मर है जितना भी है वो अपनी मोटी फसलें ज्यादा करना चाहता है।
2: नरेश जी, हमने आपके बारे में भी जाना कि आप किस तरीके से इस काम से लगे और आज किस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं। देखिए मशरूम की खेती करने के लिए आपने बताया कि हमें एक कमरे की जरूरत होती है, एक झोपड़ी की जरूरत होती है, कंपोस्ट की जरूरत होती है, बैग हमें तैयार करने होते हैं, बेड हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी फसल का बीज होता है और मशरूम के लिए स्पॉन कहा जाता है
1: जी जी।
2: ये कहाँ से मिलता है, क्या यहाँ वो तैयार हो जाता है?
1: नहीं, असल में बेसिक लैब तो बहुत सारी होती है, मेन तो इसका कल्चर है और गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से देखो प्रावधान दे ही रही है
2: जी।
1: बाकी
2: आप कहाँ से मंगाते हैं?
1: मैं दिल्ली से मंगाता हूँ।
2: अच्छा अच्छा
1: जी, जो हमारे पास 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, लगभग 40-50 साल पुरानी लैब है जो वो अब तक भी जुड़े हुए हैं।
2: जब हम इसके बैग तैयार कर लेते हैं, उसको हम एक रूम में कंपोस्ट को वहां पर हम बैग में भरकर रख देते हैं, तो उसकी देखभाल करने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं जिससे कि अच्छी फसल हम ले सकें?
1: किसी भी रूम में नए फील्ड के अंदर आप जा रहे हो तो किसी भी चीज की देखभाल करनी बहुत जरूरी होती है, तो आपने स्टार्टिंग से काम सीखना भी है, तो आपने स्टार्टिंग से लेना है कि आपने उसमें सीड मिलाया, आपका कंपोस्ट तैयार हो गया, तो उसमें डेली आप जाओगे, आप सीड की रनिंग देखोगे किसी स्टेज पे आया है, रन हो भी रहा है नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें यही चीजें, इस समय टेम्परेचर आपका लगभग 24 से 25 के भी इन बिटवीन रहना चाहिए।
2: इसके अलावा उसका जैसे भी टेम्परेचर की आपने बात की, तो कोई ऐसे यंत्र वहां पर लगाने होते हैं जिससे कि हमें पता लगता रहेगा कि उस कमरे का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कैसे हम उसको निश्चित करते हैं, निर्धारित?
1: बिल्कुल, ह्यूमिडिटी आजकल ह्यूमिडिटी भी वो भी चल रहे हैं, ह्यूमिडिफायर चल रहे हैं, बाकी थर्मामीटर आते आ ही रहे हैं डेली वाले, अपना डेली देखो सुबह शाम देखो, उसको टेम्परेचर नहीं होता तो पानी वगैरह का छिड़काव करो और उस टाइम वो करो।
2: अच्छा, कुछ किसान भाई जैसे भी आप बटन यहाँ पर लगा रहे हैं, कुछ किसान भाई ऑयस्टर की खेती भी करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है और आसान तरीका कौन सी मशरूम को उगाने का है?
1: काम तो ऑयस्टर का भी इजी है, वो हमारी लगभग 20 से 30 डेज के बीच में क्रॉप देने लग जाती है, जिस दिन से हम स्टार्ट करते हैं
0: जी जी,
1: तो वो इस पीरियड में आपको क्रॉपिंग देने लग जाएगी, लेकिन उसकी मार्केट कम है। यहाँ पर ज्यादातर मशरूम ड्राई करते हैं, ड्राई की मार्केट भी अच्छी है। अगर ऑस्ट मशरूम को ड्राई करें तो ड्राई की मार्केट भी, फ्रेश की मार्केट अभी कुछ लोग बाग नहीं जानते ना इस चीज को,
0: जी जी जी,
1: तो इस पे कर रहे हैं। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो लोग बाग जानते हैं, वो अपना लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया या हिमाचल बेल्ट हो गई, इन लोगों को पता है, क्योंकि नेचुरली ग्रो भी बहुत सारी है ना, जो नेचुरली अपना एटमॉस्फेयर के अनुसार ग्रो होती है, तो उसी के अनुसार उन लोगों को पता है।
0: इन दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू किस में ज्यादा होती है?
1: न्यूट्रिशन वैल्यू तो लगभग मशरूम के अंदर तो लगभग सभी में इक्वली है।
0: जी जी जी,
1: थोड़ी बहुत कुछ वैरायटीज ऐसी है थोड़ी सी वो हो जाती है, बहुत हाई पावर पे चली जाती है।
2: बहुत अच्छी जानकारी आज आपने मशरूम के बारे में दी है। देखिए बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो मशरूम के काम को करना चाहते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता है। बेचने की क्या व्यवस्था आप करते हैं?
1: मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी भी काम के लिए जब स्टार्ट किया जाता है तो पहले मार्केट के बारे में, उसकी मार्केट अपने आप ही नेचुरली बनी होती है। अब यहाँ पर मशरूम का कैनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, जो कैनिंग में लोग बाग देते हैं। अब पूरा हमारा यूपी क्षेत्र के अंदर कोई नहीं लाता, ये हमारी कोटद्वार उत्तराखंड के अंदर दो दो तीन तीन यूनिटें कैनिंग की लगी हुई है। जो पूर्ति कहाँ से करते हैं, ये पूर्ति हरियाणा से आते हैं पूरे ट्रक के ट्रक शक्तियों में, तो क्या बीच में स्टेट हमारा भी पड़ता है, यूपी पड़ता है, वो क्रॉस करके जब वहां तक ला रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं इस काम को। तो वो लोग तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़े तभी वो, इसीलिए उनको दूसरे स्टेट से लाके फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
2: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अगर किसान भाई चाहे और ये निश्चित कर लें कि मुझे इस काम को करना ही है, तो शायद उनको सफलता मिलकर ही रहेगी।
1: बिल्कुल,
2: आप इतने बड़े इस फार्म को देख रहे हैं, आप अपनी बेचने की व्यवस्था भी इस फसल की कर ही रहे हैं, मशरूम को आप बेच भी रहे हैं, और हम समझते हैं कि आपके इस जो प्लांट में जो बहुत सारी लेबर भी लगी हुई होगी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए श्रम की जरूरत तो पड़ती ही है।
1: सही बात है
2: ना जी?
1: जी जी जी।
2: तो कोई विशेष बात आप हमारे मशरूम उत्पादक भाइयों को बताना चाहेंगे, चाहे वो बाजार को लेकर हो, चाहे वो उसको पैदा करने के लिए हो, क्योंकि झिझक बहुत किसान भाइयों के अंदर होती है नया काम करने की, जब सोचते हैं ना, तो उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे?
1: नहीं, झिझक वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो किसी काम को भी स्टार्ट करेंगे हम तो उसको तो मार्केट अपने आप ही बनता रहेगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे तब खाली हम सोचते रहेंगे कि हाँ इस काम को करेंगे, यूट्यूब पे आदमी देख के बहुत करना भी चाह रहे हैं
0: जी जी,
1: और कर भी रहे, बल्कि अपना जो प्रैक्टिकल करोगे ना वो बेटर निकल के आएगा, और उसका रिजल्ट भी आपको हर चीज की, मार्केट की तो दिक्कत है ही नहीं है कोई। मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था यहाँ पर, मैं पंजाब था उस टाइम, मुझे पंजाब से भी बहुत सीख मिली। जब 600 किलोमीटर दूर से हम दिल्ली माल बेचते थे तो हम तो 150 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने अपना यहाँ पर बिजनौर में भी काम स्टार्ट किया और 400-500 किलो पर डे का प्रोडक्शन किया। मैंने दिल्ली के भरोसे पे किया था, लेकिन दिल्ली मुझे एक दिन भी नहीं बेचनी पड़ी। मैंने अपने बिजनौर को भी विकसित किया, हरिद्वार भी भेजा, कोटद्वार भी भेजा, हल्द्वानी भी भेजा, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन हम करेंगे तभी।
0: बिल्कुल।
2: तो कुल मिलाकर नरेश जी, ये बात सामने आती है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए ठान लें तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हमें मशरूम की खेती करनी है तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसको हम कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा लागत की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये कम लागत में शुरू किया जा सकता है। आज नरेश जी आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने मशरूम उत्पादन के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय, नरेश हमारे अभिमान के समय ने अच्छी जानकारी सुनी और जानकारी दे रहे थे नरेश कुमार, फार्म मैनेजर मशरूम फार्म बढ़िया से। और भैया इस संबंध में हमारे किसान भाइयों ने जो बातचीत करी है वो है हमारे भैया प्रमोद सिंह।
2: और देखो अंकित भैया, इसमें बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को मिली कि भाई किस तरीके से वो मशरूम की खेती कर सके हैं। और भाई किसी भी काम को करने के लिए देखिए हमें घबराने की जरूरत नहीं होती, कोई भी काम करना है तो हमें पहले अच्छा प्रशिक्षण उसका ले लेना चाहिए, पूरी जानकारी के बाद ही हमें काम को करना चाहिए, तो हम उसमें जो है सफलता पा सके हैं।
3: बिल्कुल भैया, देखो इन्होंने भी एक अच्छी बात बताई है कि जब भी कोई हम काम करें तो पहले जो हम स्थान का चयन अच्छे से कर लें,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और बीज का चयन हम अच्छे से कर लें, और भैया बिना प्रशिक्षण के कोई काम ना करा।
2: देखो भाई हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं, सारे काम बड़ी समझदारी के साथ में कर रहे हैं, और जहां तक युवा साथियों की बात है तो भैया वो भी अब
3: पढ़ लिख कर अपने काम में लगे हुए हैं, स्वरोजगार अपना रहे हैं और खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे काम कर भी रहे हैं।
4: बिल्कुल भैया, जैसे हमारे यहाँ डेयरी व्यवसाय है, मछली पालन है, सुकर पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, और भैया जैसे मशरूम की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, भैया लाभ भी कमा रहे हैं।
3: भैया लाभ तो कमा रहे हैं, और देखो बहुत देर से हम बातचीत कर रहे हैं, किसान भाइयों का मनोरंजन तो कराना है ना।
4: बिल्कुल भैया।
3: तो भैया अब क्या सुनाओगे?
4: भैया हम सुनाएंगे अपने किसान भाइयों को एक प्यारी सी रागनी।
3: तो ठीक है भैया, आओ करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यो रागनी मोर ध्वज के किस्से से।
4: बिल्कुल भैया।

0: विद्याधरणी दरबारा में भाइयों ने युवराग्नि सुनी सुभाष चंद्र और साथी की आवाज में। और भाई किस्सा था राजा मोरध्वज का।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमारे किसान भाई का मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया जिस दिन भर की जो थकान है वो भी मिट गई होगी।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो। और भाई देखो किसान भाइयों का मनोरंजन हो गया, जानकारी मिल गई। और भैया मौसम मौसम की भी जानकारी थारे पास है अकना?
1: बिल्कुल भैया, मौसम की जानकारी है हमारे पास, चिट्ठी है, तुम कहो तो पढ़ दे। मैं भैया
0: बिल्कुल पढ़ दो भैया।
1: ये चिट्ठी में प्राप्त हुई है भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ सर।
0: अच्छा
1: और भैया इस चिट्ठी के अनुसार अब जा एक दो दिन जो आने वाले 21-22 तारीख में भैया हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: अच्छा
1: तो भैया हमारे किसान भाई मौसम को देखकर अपने कृषि कार्य करते रहे। मैं
0: बिल्कुल भाई देखो मौसम के हिसाब से ही हमें भाई अपने सारे खेती बाड़ी के काम करने चाहिए। और भाई हम तो अपने किसान भाइयों से बार बार यो आग्रह करते रहे हैं कि भैया उन्हें हमारा यो कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्या किसान भाई सुनना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो भाई जब तक किसान भाई हमें नहीं बताने के, तो देखो हम फिर वही बात आ जाना कि भैया पता हो तो हम और अच्छे इस कार्यक्रम को
1: बिल्कुल
0: अपने
1: भैया,
0: किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे।
1: बिल्कुल भैया, जब तक हमारे किसान भाई में कोई अपना खत नहीं भेजने के भैया, हमें कैसे पता चलेगा हम कैसे रूपरेखा तैयार करेंगे। तो भैया उसके लिए हमारे किसान भाई हमारे पते पर खत भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल। और भैया देखो चिट्ठी भेजने के लिए किसान भाई जाना ही है, पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63।
1: बिल्कुल भैया
0: और इसके अलावा
1: भैया,
0: भाई
1: हमारे किसान भाई जब जब फोन सबके पास हैं और भैया हमारे किसान भाई जब व्हाट्सएप भी चलाते हैं तो
0: जी जी
1: भैया
0: जी
1: हम वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: भैया देखो 94-578-278 नंबर पे किसान

0: व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी आकाशवाणी नजीबाबाद को फॉलो कर सकते हैं। और भैया देखो
1: बिल्कुल
0: जरा घड़ी और देख लो,
1: बिल्कुल, देखो भैया घड़ी भी अब ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं दे रही है, तो भैया दोनों भैया कर लेते हैं जल्दी से। राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत पूर्व प्रसारित वार्ता खड़ी बोली का क्रमिक विकास। वार्ताकार हैं डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी।
1: खड़ी बोली हिंदी वर्तमान में विश्व संपर्क की भाषा है, जिसमें हम भारतीय भाषा एवं संस्कृति के विकास क्रम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस भाषा के माध्यम से भारत की संसद में और अनेक राज्यों की विधानसभाओं में ही काम नहीं हो रहा है, अपितु यह हिंदी टेलीविजन, फिल्मों, अखबारों की एक ऐसी भाषा है जो वैश्विक स्तर पर भारत को भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से जोड़ती है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका मूल क्षेत्र मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, दिल्ली आदि का है। अब हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में विश्वभाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। यद्यपि उसके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विविध रूप हैं, वह आज भारत की राजभाषा और साहित्यिक भाषा भी है। खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा और अवधि के साथ ही होने लग गई थी। साहित्यिक भाषा के रूप में इसका विकास बाद में हुआ। यद्यपि हिंदी की अन्य बोलियों के साथ साथ खड़ी बोली का विकास भी होता रहा, परंतु उसका विकास भारतेंदु युग से स्वतंत्रता आंदोलन के जोड़ने के साथ तीव्रता से हुआ। दक्षिणी हिंदी में भी खड़ी बोली का आरंभिक रूप दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत से बीजापुर तथा गोलकुंडा आदि क्षेत्रों में गए व्यापारियों तथा कर्मचारियों के साथ यह बोली दिल्ली से पहुंची। इस बोली में मराठी, कन्नड़ तथा तेलुगु का प्रभाव भी दिखाई देता है। दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में वली दकनी महत्वपूर्ण है, जिनकी भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने लिखा है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, वली को कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। दक्षिणी हिंदी के अन्य रचनाकारों में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें ख्वाजा बंदा नवाज, शाह कलंदर, मिराजी शमसुल सहित अनेक रचनाकार हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस बोली को हिंदी या हिंदवी कहा जाने लगा था। खड़ी बोली के काव्यधारा के विकास में नजीर अकबराबादी भी महत्वपूर्ण है, जिनकी भक्ति रचनाओं में खड़ी बोली का प्रभाव है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो भी ऐसी काव्य भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे, जो बाद में आधुनिक काल की खड़ी बोली के अति निकट है। उनकी यह भाषा भाषिक प्रयोगों में काफी विकसित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस विकास क्रम को हिंदी साहित्य के इतिहास में चिन्हित किया। अमीर खुसरो के काव्य का आधार इसको बताते हुए उन्होंने उनकी पहेलियों को भाषा विकास के क्रम में परखा। उदाहरण है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह कविता अमीर खुसरो के समय की खड़ी बोली के स्वरूप को स्पष्ट करती है। खड़ी बोली आधुनिक प्रवृत्तियों के विकास में सिद्ध और नाथ साहित्य का भी विशेष महत्व है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाने का श्रेय सूफी संत शेख फरीद को भी दिया जाता है। संत साहित्य में भी खड़ी बोली का विकास हुआ। संतों की रचनाओं में खड़ी बोली के उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमार यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इसी प्रकार रेतकालीन कवियों में भी यारी साहब, पलटू साहब तथा दरिया साहब भी संत कवियों की भाषा में ही लिखते दिखाई देते हैं, जो खड़ी बोली के निकट है। मलुकदास भी एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके साहित्य में भी खड़ी बोली के विकास का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब्दुल रहीम खानखाना की रचना मदनाष्टक में भी खड़ी बोली का प्रयोग है। वह ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जिसमें रहीम की नई भाषा दिखती है। यह भाषा खड़ी बोली का तत्कालीन स्वरूप माना जा सकता है, जिसमें स्थानीय बोलियों के साथ साथ खड़ी बोली के प्रयोग स्पष्ट हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम आधुनिक काल तक आते आते हिंदी के विकास क्रम को कविता के माध्यम से देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप में 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, उसने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया। इस समय भारत अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में जूझ रहा था। अंग्रेजी तथा अरबी फारसी का प्रचलन था। अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय बोलियों में अरबी फारसी को जोड़कर व्यावहारिक हिंदी बनी। इस कार्य को आगे बढ़ाने में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी योगदान है। उन्होंने देवनागरी लिपि में धर्म प्रचार के लिए सामग्री बनाई और उससे आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। स्वतंत्रता आंदोलन के निरंतर व्यापक होने के साथ साथ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदी धर्म सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी अपनी प्रचार सामग्री हिंदी खड़ी बोली में प्रकाशित की। इससे खड़ी बोली को विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सहयोग और समर्थन मिला। प्रेस की स्थापना होने के साथ ही खड़ी बोली का प्रचार भी बढ़ता गया और हिंदी समर्थकों, विशेषकर महर्षि दयानंद सरस्वती का इस समय हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सदल मिश्र तथा लल्लूलाल द्वारा भी फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। इसे वे हिंदुस्तानी कहते थे। मुंशी सदाशुकलाल नियाज ने खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी इसी भाषा में प्रयुक्त हुई। सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला, प्रेमसागर जैसी पुस्तकों में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा और उर्दू का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। नासिक के तो उपाख्यान में सदर मिश्र ने खड़ी बोली में संस्कृत शब्दावली को प्रयुक्त किया है। इसी क्रम में श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चंद्रकांता संतति भी प्रकाशित हुई, जो देवकी नंदन खत्री की लोकप्रिय रचनाएं हैं। इसमें खड़ी बोली गद्य का विकसित रूप दिखाई देता है। प्रारंभिक रूप में खड़ी बोली का जो रूप दिखाई देता है उसका क्रमशः विकास आगे होता दिखाई देता है, जिसमें 1858 ईस्वी में अयोध्या में जन्मे अवधवासी लाला सीताराम बी ए भूप की कविता हिंदी के आधुनिक काल में अवधि बोली क्षेत्र तक नए रूप को प्रदर्शित करती है। वैरगिया नाला जुलम जोर, जहां रहत साधु के भेष चोर, जब जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पै तीन तीन। हिंदी गद्य लेखन में यह परंपरा यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद के कवि वचन सुधा पत्र से आगे बढ़ती है, फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ साथ भारतेंदु के प्रयासों ने खड़ी बोली को कविता और गद्य दोनों में स्थापित कराया। अपनी भाषा को उन्नति के लिए सब प्रकार की उन्नति का मूल मानने वाले भारतेंदु की यह कविता बहुत चर्चित रही है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान मित रहत हीन के हीन। अंग्रेजी के प्रति उनकी इस धारणा ने अंग्रेजी को वर्चस्ववादी एकाधिकार को चुनौती मिलती है और स्थानीय भाषा में अंग्रेजी के समानांतर खड़ी बोली हिंदी के महत्व को स्थापित करने वाले विचार आते हैं। भारतेंदु ने अंग्रेजी भाषा के गौरव के स्थान पर स्थानीय भाषा खड़ी बोली के गौरव को स्थापित किया, इसलिए अंग्रेजी को वो झूठी कहकर प्रचारित करते हैं। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित उदन मार्दन तथा 1885 ईस्वी में काशी से प्रकाशित बनारस अखबार महत्वपूर्ण है। शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित बनारस अखबार की लिपि देवनागरी तथा भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी। प्रतापगढ़ के कालाकाकर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार की भी खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। 19वीं सदी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ साथ हिंदी के विकास को नई गति मिलती है। खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाने में इस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी के आंदोलन के बढ़ने के साथ ही खड़ी बोली हिंदी व्यापक प्रसार का क्षेत्र विकसित हुआ। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से लेकर बांग्ला क्षेत्रों तक खड़ी बोली हिंदी की स्वीकृति आंदोलन की भाषा के रूप में होती है। प्रारंभिक खड़ी बोली में उर्दू, अंग्रेजी, देशज, संस्कृत बोलियों और भाषाओं का प्रचार है। इससे उसकी स्वीकृति अनेक क्षेत्रों गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, ढाका, लाहौर तक दिखाई देती है। तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगला के साथ साथ हिंदी खड़ी बोली साहित्यिक रूप ग्रहण करती गई। दूसरी ओर आजादी के आंदोलन की भाषा बनने के कारण लोकप्रियता में वह भारत की प्रमुख भाषा के रूप में पल्लवित पुष्पित हुई। आजादी के आंदोलन की भाषा होने के कारण तत्कालीन खड़ी बोली हिंदी में अन्य बोली भाषाओं को ग्रहण करने की जो स्वीकार्यता बढ़ी, उसी का परिणाम हुआ कि खड़ी बोली हिंदी देश की राजभाषा के रूप में हिंदी कहकर जानी गई। यह भारत की प्रमुख भाषा होने के साथ साथ साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं के रूप में पहुंची। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा फिजी, सुरीनाम, गयाना, मॉरिशस, ट्रिनिडाड में ले जाए गए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों में अधिकांशतः खड़ी बोली क्षेत्र के नहीं थे, परंतु भोजपुरी, अवधि बोली क्षेत्र के इन मजदूरों ने भी अपनी भावी पीढ़ियों में हिंदी खड़ी, परिणामतः आज खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप इन देशों में भी भारतवंशियों के बीच लेखन और अभिव्यक्ति का आधार बना है। इसी प्रकार कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, अरब देशों, यूरोप के अनेक प्रमुख देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों सहित चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में खड़ी बोली हिंदी के मानक रूप की प्रतिष्ठा है। इसी कारण प्रवासी भारतीयों में एक बड़ा वर्ग हिंदी का प्रयोग करता है और प्रवासी साहित्य के रूप में हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर रही है। यद्यपि विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार में विदेशी लेखकों, भाषा वैज्ञानिकों, शिक्षकों तथा भारत सरकार द्वारा प्रसारित हिंदी शिक्षण योजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज विदेशों में हिंदी फिल्मों, टेलीविजन, सीरियलों, ओटीटी माध्यमों सहित हिंदी के रूप में विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। साहित्यिक भाषा बनने के साथ ही हिंदी लोक में भी लोक बोली के रूप में दो मानकों खड़ी और हरियाणवी के रूप में प्रचलित है। खड़ी बोली के इन दोनों लोक रूपों में साहित्यिक रचनाओं का लेखन हुआ। स्थानीय लोकवार्ता, लोकनाट्य, लोकगीत के विकास के साथ ही इन रूपों में प्रभूत मात्रा में साहित्य उपलब्ध है और आज भी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में खड़ी बोली के विभिन्न लोकगीतों, लोकनाट्यों का प्रचलन है। लोकभाषा के रूप में कौरवी और हरियाणवी की साहित्यिक रचनाएं पौराणिक, ऐतिहासिक, देशभक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन सहित वर्तमान स्वरूप में अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी के साथ साथ इन लोक बोलियों का साहित्यिक एवं भाषाई स्वरूप विकसित हो रहा है। यद्यपि मानक हिंदी स्वरूप ग्रहण करने के बाद इनका स्थानीय स्वरूप मौखिक अभिव्यक्ति में अधिक प्रयुक्त हो रहा है। हाँ, फिल्मों, टेलीविजन में भी स्थानीय बोली रूपों का प्रयोग बढ़ा है। खड़ी बोली आज विकसित होते होते अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई है। इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों, बोली तथा भाषा रूप में प्रयोगकर्ताओं के साथ साथ फिल्मों, पत्र पत्रिकाओं सहित इंटरनेट माध्यमों में प्रयुक्त स्वरूप को जाता है, जिसके कारण आज हिंदी विश्व की प्रथम तीन भाषाओं में से एक है। विकास की दृष्टि से देखें तो यह विश्व की अकेली भाषा है जिसको लगभग 150 वर्षों में विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित विकसित होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय भाषाओं में भी आज वह प्रमुख भाषा है। हिंदी के वर्तमान स्वरूप को खड़ी बोली हिंदी के परिनिश्चित रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का यह विकास उसके प्रयोगकर्ताओं रचनाकारों के लिए गौरव की बात है।
0: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता खड़ी बोली का क्रमिक विकास। वार्ताकार थे डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, शब्द रचना की है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर में लता मंगेशकर और मुकेश की ही युगल आवाजों में यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म कोयला का एक गीत, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने, शब्द रचना है इंदिवर की और संगीत यह है राजेश रोशन ने।

कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे भजन। कलाकार होंगे पुनीत मेहरा। संसद समीक्षा रात्रि 8:00। 9:30 पर पब्लिक स्पीक। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00। यह आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 6:30 पर। नरेंद्र वर्मा का काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत सवेरे 6:45 पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में कल 7:05 पर जानकारी का विषय होगा जल ही जीवन का आधार है। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा धान की फसल में खैरा रोग का नियंत्रण। समय होगा सवेरे 7:10।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का प्रसारण होगा सवेरे 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे वार्ता भारत की विदेश नीति के नए आयाम। वार्ताकार होंगे अजय कुमार मित्तल। समय होगा 6:45। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे जगजीत सिंह की गायी गजलों का। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या

0: में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के विकास के साथ बाराबंकी के विकास के भी नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
5: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समय बद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन करते हुए कांवड़ की ऊंचाई, डीजे की आवाज और समेत अन्य पहलुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
6: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कांवड़ की

0: हाइट्स कार्बन के वॉल्यूम पे डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, महंगाई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ गांवों के श्रद्धालु है उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद रहे लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था न।
1: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत IIT कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पर नवाचार और एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर फॉर एक्सलेंस इकोसिस्टम इकोजेन की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन, उपयोग और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है। इच्छुक हज आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रियों का चयन डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया से 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में देशभर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को CAG की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में UP T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी SP और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
1: UP T20 लीग सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में CBSE नॉर्थ जोन की लॉन टेनिस और शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत कबीर नगर जिले में भी एक पुराना मंदिर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुनीत मेहरा के गाए भजन।

पुनीत मेहरा के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंग कीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और H हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET UG 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। प्रस्तुत है फिल्म हमराज का ये गीत, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने और धुन तैयार की है रवि ने, शब्द रचना की है साहिल लुधियानवी ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म वारिस का एक गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मनमोहन ने। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म दो रास्ते का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना तैयार की है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हेना के कुछ नगमे। श्रोताओं, फिल्म हेना 1991 में बॉलीवुड की एक अमर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी योजना दिग्गज फिल्मकार राज कपूर ने बनाई थी, लेकिन उनके निधन के बाद उसे उनके बेटे रणधीर कपूर ने निर्देशित किया।

श्रोताओं, फिल्म हिना की कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन और सरहदों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। श्रीनगर में रहने वाले चंदर की शादी चांदनी से होने वाली होती है, लेकिन शादी के दिन एक भीषण दुर्घटना में उसकी कार नदी में गिर जाती है और वह बहकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहुंच जाता है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास

0: और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स रिते ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
4: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Monsoon session of Parliament begins on stormy note. Both houses of Parliament witnessed repeated disruptions over various issues. Union Minister J.P. Nadda holds talks with protesters in New Delhi, appeals to end sit-in and restore normalcy. President Draupadi Murmu calls for stronger economic partnership between India and Moldova and greater cooperation in high-growth sectors. Heavy rainfall claims 4 more lives in Jammu Division, taking death toll over past 2 days to 16. Lieutenant Governor Manoj Sinha reviews flood situation in several districts of the Union Territory. Red alert issued for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. And Labour Party leader Andy Burnham assumes office as the new Prime Minister of the United Kingdom. And now the news in detail. Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both Houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
1: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. Aur dono ko productive hote hain, to desh ka kalyan hota hai, jeev matra ka kalyan hota hai. Sathiyo, pichle ek mahine mein desh ne anek siddhiyan prapt ki hai, chahe rashtriya ho, antarrashtriya ho, aur ab to antariksh bhi ho. भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं.
0: President Draupadi Murmu today called for a deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today.
3: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors, such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement, manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
0: Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses.
3: India also offers good business opportunities for Moldovan companies for trade and business. We remain committed to fostering a transparent, predictable and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: Earlier, President Murmu and her Moldovan counterpart Maia Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Marisi's font in Chisinau. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. The president is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today expressed confidence that the visit of Panamanian Foreign Minister Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez further strengthens bilateral ties across all sectors. Dr. Jayashankar made the remarks during a meeting with the Panamanian Foreign Minister in New Delhi.
4: We hope that your visit will further strengthen our relationship across all domains. We had met recently during the 5th India-SICA ministerial meeting, which the two of us had co-chaired. Your current visit builds on the momentum of high-level exchanges that we've had, and I believe that both our governments, both our leaders are very keen at deepening and widening our partnership.
0: The Supreme Court today observed that the issue of alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh, should not be politicized. It said that the Ram Temple donation row is a simple case of commission of crime and the court is just to ensure proper investigation. The Apex Court asked the Solicitor General appearing for the Uttar Pradesh government to take instructions on whether the special investigation team, which had examined the entire issue before the registration of the FIR, could be entrusted with the responsibility to probe the case instead of the local police. The top court will hear the plea again on the 27th of this month when Uttar Pradesh government will apprise it about the SIT probe in matter. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Union Minister J.P. Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and an initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. The Delhi police has appealed to all the protesters in New Delhi to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. In a video message, Additional Commissioner and Public Relations Officer of Delhi Police, Rajiv Ranjan, urged the participants to conduct themselves peacefully, refrain from indulging in any unlawful or violent activities and comply with the lawful directions issued by police officers or personnel deployed on duty. He advised the public not to believe or circulate rumours, misinformation or unverified content through any platform. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least seven people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Poonch districts. More from our correspondent.
5: Heavy rains today severely hampered rescue operations in both Rajouri and Poonch districts a day after devastating flash floods and landslides claimed 12 lives and left several other missing. The continuing rainfall has raised concern over the possibility of fresh landslides and flash floods, with residents in vulnerable areas being advised to remain alert. The administration is closely monitoring the situation. Emergency teams, including the NDRF, SDRF, J&K Police and Army, are deployed on high alert in vulnerable areas. Key roads in Poonch, Rajouri, Riyasi and Udhampur have been reopened and work to restore water supplies in several areas is ongoing. The Meteorological Department has forecast moderate to heavy rainfall across Jammu and Kashmir till July 23, prompting district administrations to issue advisories urging people to remain vigilant and avoid venturing near rivers, streams, nalas and other water bodies. This is N. Gulshan Rana for Akashvani News from Jammu.
0: Chief Minister Umar Abdullah has announced an ex gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Poonch districts. Meanwhile, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. The Lieutenant Governor spoke to senior officials and directed them to ensure swift relief measures and speedy restoration of damaged infrastructure in the affected areas. Intermittent rainfall continues across Uttarakhand, affecting normal life in several parts of the state. Rain and landslides have disrupted traffic on several national highways. The Char Dham Yatra has been temporarily suspended till further orders as a precautionary measure. Meanwhile, the IMD has forecast heavy rainfall in several districts of the state over the next 24 hours. We have more from our correspondent.
6: Heavy rainfall has damaged Dehradun-Masuri main road near Paniwala Band. In view of public safety, the administration has completely closed the route to traffic until further orders. People have been advised to use alternate routes for travel to and from Masuri until road is reopened. Meanwhile, Garhwal Commissioner Anand Swarup has directed the concerned district magistrate to ensure that pilgrims are accommodated at safe locations if the Char Dham Yatra routes remain blocked. He has also instructed that the pilgrims should resume only after the routes are declared completely safe. Pilgrims have been not to pay attention to rumors and to follow only the official advisories issued by the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: In Assam, continuous rainfall triggered landslides at several locations in Guwahati today. A major landslide at Madhav Dev Nagar in the Maligaon area damaged a residential house. Four people were injured and have been admitted to Guwahati Medical College and Hospital. The IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. In Himachal Pradesh, all government and private educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will remain closed tomorrow following a red alert for heavy rainfall. The weather office has also forecast heavy rain in Chamba and Kulu districts. In Sikkim, all 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel in southern part of the state were safely rescued today following a massive multi-agency operation. A landslide reportedly had triggered a suspected gas leak inside the tunnel. In the United Kingdom, newly elected leader of the Labour Party, Andy Burnham, has took charge as the country's new prime minister. King Charles III invited the 56-year-old former mayor of the Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. In his inaugural speech at 10 Downing Street, Mr. Burnham said he will make politics more about problem solving.
7: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years, a new political model and a new economic model. In the 1980s, Britain took some wrong turns. Political power was centralised, economic power privatised, large parts of the country deindustrialised, and they still haven't recovered. And that's why we will change politics. To make it more collaborative, more about problem solving than point scoring.
0: In news, Justin, India has condemned the attack on the vessel MV Golden Leo yesterday while departing the port of Odisha. External Affairs Ministry in a statement said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The Sensex declined 443 points or 0.6% to close at 77,709. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins on stormy note. Both Houses of Parliament witness repeated disruptions over various issues. Union Minister J.P. Nadda holds talks with protesters in New Delhi, appeals to end sit-in and restore normalcy. President Draupadi Murmu calls for stronger economic partnership between India and Moldova and greater cooperation in high-growth sectors. Heavy rainfall claims four lives in Jammu Division, taking death toll over past 2 days to 16. Red alert issued for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. And Labour Party leader Andy Burnham assumes office as the new Prime Minister of the United Kingdom. That is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है। समीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई है, जिससे पिछले 2 रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के दरइंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल बहुत शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मॉनसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन पार्लियामेंट को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। तहम वक्फे सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला और बाद में प्रिसाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया की जानिब से ऐवान में नज़्म व नस्क बरकरार रखने और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया है कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करती है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोबा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। आलमी महाजाराई खासतौर पर मगरबी एशिया का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने तवानाई, खाद और दीगर जरूरी अशिया की सप्लाई से मुतालिक चैलेंजों का कामयाबी से सामना किया है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद मुल्क ने 7.7% की शरह तरक्की दर्ज की है, जो उसे दुनिया की तेजी से तरक्की कर रही अहम मईशत बनाता है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मानसून इजलास मुल्क की तरक्की के सफर को मजीद मुस्तहकम करेगा। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सहपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन अमान बरकरार रखने, तहमुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमन कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तला फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्जामात को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमिजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमिजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
3: By the growing cooperation, there is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement of manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in green energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
8: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्डोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्डोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
3: We remain committed to fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
8: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंट यादगार पर गुलाय अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम अज कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जिला इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ دونوں سرحدی ضلعوں میں بارش سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والوں کے ہر کنبے کو 6-6 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
9: آج کی شدید بارش نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بچاؤ کارروائی کو کافی متاثر کیا. ایک دن پہلے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد دیگر لاپتہ ہو گئے تھے. دونوں سرحدی اضلاع میں آج دیر رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی جو آخری خبریں ملنے تک جاری تھیں. اس وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں سخت مشکلات پیش آئیں. مسلسل بارش کے بعد مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور کی اہم سڑکیں پھر سے کھول دی گئی ہیں جبکہ متعدد علاقوں میں پانی سپلائی کی بحالی کا کام جاری ہے. محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے جس کے مدنظر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے. جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
8: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی اگلے دو دن تک بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کرناٹک، تلنگانہ، ودربھ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں آج بھی بارش سے لوگوں کو کچھ راحت ملی. محکمہ موسمیات نے کل دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمے کے مطابق کل راجدھانی دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری جبکہ کم از کم درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. لیبر پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد اینڈی برنہیم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. کیر سٹارمر کے استعفی دینے کے بعد شاہ چارلز سوئم نے گریٹر مینچسٹر کے 56 سالہ سابق میئر کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا. اس سے قبل کیر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پر اپنا آخری خطاب کیا جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اپنا استعفی دینے کے لیے بکنگم پیلس گئے. انہوں نے کہا کہ وہ جناب برنہیم کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور انہوں نے لیبر پارٹی کے نئے لیڈر کو اپنی مکمل حمایت کا عزم کیا. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن سٹیل سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا کہ ملاقات کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے طریقہ کار کو اپنانے، ٹیکنالوجی کے منتقلی، ماحولیات سے متعلق مالیات، عالمی سطح پر جائزے اور ٹیکنالوجی کی مساویانہ منتقلی جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے نہ صرف قومی سطح پر اپنے طے شدہ اہداف کو مقررہ وقت سے پہلے حاصل کیا بلکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر شعبوں میں بھی اہم پیش رفت کی ہے. وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی ٹیم نے مولیکولر بایولوجی اور بایو کیمسٹری، اینیمل فیزیولوجی، اینیمل مورفولوجی اور سسٹمیٹکس کے علاوہ پلانٹ کمپیوٹیشنل بایولوجی جیسے مضامین میں غیر معمولی جانکاری فراہم کی ہے جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا. دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر شور و شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولدووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلیٰ ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا. جموں ڈویژن میں شدید بارش سے مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی جس سے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. اور ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بہت شدید بارش سے متعلق کل ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
10: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, आईटी

0: हर जगह काम आता है, तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संधि लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओ, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2331-0481-0111-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है।
1: देखिए शरद, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूं आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई जरूर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरद के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं, तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा फरद आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं, तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, तो उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहां से लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी पर अगर टीडीएस कटता है तो आईटीआर इसमें कैसे दिखाएंगे?
3: देखिए कि वैसे तो एक आपका टीडीएस जो है एफडी के ऊपर वो 40,000 रुपए तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि वो ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
0: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी।
4: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, कोहली सर को नमस्कार। सर
1: नमस्कार अमित जी। नमस्कार।
4: सर मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
1: अच्छा अच्छा जी जी जी।
4: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी इम्प्लॉय या गवर्नमेंट इम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो एक्स वाई जेड
1: जी,
4: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
1: जी।
4: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई टीडीएस कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
0: चलो जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
1: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस कि वो बिजनेस इनकम है, कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं, और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें. ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं. और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में

0: दूसरा दवा से।
1: जी हुसैन साहब बताइए।
0: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
1: जी,
0: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुँच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताए सर जी।
1: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द मैं ठीक समझ रहा हूं अगर, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया, तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
2: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
1: जी,
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
1: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
2: जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, आईटीआर के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
1: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दे तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए, तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
4: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
1: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्टर हमारे साथ जुड़ गए तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
5: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताया।

0: जी नागपुर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ओके
0: शरद जी आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
1: अच्छा प्लेजर सर।
0: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर। एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
1: जी।
0: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रखें।
1: अच्छा,
0: और कौन सी ऑप्शन बेटर
1: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क है। पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है। पर अब एक डेटा ये कहता है, और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है NPS, उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
3: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं, और मेरा ये प्रश्न है।
1: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो NRI है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
1: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं हैं, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
2: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
5: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
1: सर हमारा भी सब प्रेम,
2: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
5: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
1: जी
5: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
1: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्ज होता है किसी की गलतियां निकालना। और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने, सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन भी जिन्होंने भी ये हृदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
2: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूंगा इसमें एक कि कुली जी, अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
1: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
3: नहीं ठीक करता, और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
1: नहीं नहीं, वो हो जाए, मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
3: गलत है, लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
1: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
2: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
6: नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार
6: पैनल को। नमस्ते।
1: नमस्कार
6: सर, पिछले साल जिस यूजर आई डी, तो यूजर आई डी नहीं होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
1: तो
6: अगर अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आई टी
1: आर भरने वाला। तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है, उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है। तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
2: जी शरद जी, हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी,
7: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
2: नमस्कार
7: जी, मैं रवि जवालिया हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पे क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
1: अरे अरे रवि जी, आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा, पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
2: और अब थोड़ा सा समय बचा है, तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
1: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर करें।
2: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
2: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया।
1: शुक्रिया।
2: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के

सदस्य भी रहे, श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं

0: नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक,
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण स्वयं लेलवाते हुए देश को कहा था कि विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें,

0: सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:13 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी फरमाइश। पेश है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म करीब का एक गीत जिसे आवाज दी है कुमार शानू और संजीवनी ने। पसंद करता है आप सभी श्रोतागण। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलीस डिकेस्टो। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। गंज ढुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से अजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम है क्योंकि, और स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के। पसंद करता है आप सभी श्रोतागण। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकार, नर्मदा पोहारकार, सुनील पोहारकार, साहिल पोहारकार और कुमारी सुजाता पोहारकार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरा।

जितैग बिरग और मीका बिरग। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलाम गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी सदस्य। कस्बा उघैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहान, रिहाना, अराफात, अदीबा और कादिर चौधरी। ग्राम गदरौना से मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से हैप्पी रॉय। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक और सुंदरलाल खटक। माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जेवियम। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय गोंडाने और हीरामन शेंडे। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सोहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी। आइए श्रोताओं सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा संगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं के पत्रों व व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आइए अब सुनते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत, जिसे आवाज दी है विनोद राठौर ने और पसंद करते हैं आप सभी श्रोतागण। कवाई सालपुर पूरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और इनके परिवार के सभी सदस्य। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अनार

बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, तन्वी मनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम जुझैला, थाना शिवाला कलाम, बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयसा, सायना महविश, मोहम्मद अफवान, अदीना नूर। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। योगनगर बुढ़लाड़ा पंजाब से नरिंदर मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन मेहता और प्रेमलता मेहता। गंज डुंडवारा से ही शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान और उस्मान अंसारी। जसपुर रोड दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद से मनबुल दुकानदार और बेगम साहिबा महबूब, अलशिफा परवीन और इनके सब परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

चमत्कार ये है फिल्म का नाम, जिसका गीत आप सभी श्रोताओं ने लिख भेजा है। इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सोहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारिस, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।

और इनके परिवार के सभी सदस्य। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित और संजय शर्मा। गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर बेगम अंसारी। फोफाली जिला यवत नाम से जयराम सिंगणकर, दीक्षांत सिंगणकर और अर्पिता। नई बस्तीगंज ढुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान। गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान और सैफ खान। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

और अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म मन का ये गीत, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। पसंद लिख भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह, राम गढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। गांव सुलर जिला पटियाला पंजाब से सनी कंबोज, मनिंदर कंबोज, तरसेम, जसविंदर कौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। रसूलपुर नंगला जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से दीपक नामदेव और वैभव नामदेव। अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक।

मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। पेश है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह गीत।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म प्रेम रोग का ही गीत, जिसे सुर दिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं करोला मुरादाबाद से अयूम खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह गीत।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है।

0: तो पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्चस्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion.